0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: और हमारी अगली खबर आपको मैं ले चलूंगी दिल्ली हाई कोर्ट। जी हाँ, जहां पर एक बहुत बड़ा डिसीजन हाल ही में लिया गया था। गुड मॉर्निंग मस्ती मैडनेस।
2: मस्ती मैडनेस और रेडियो मस्ती 24/7।
3: यस, हमारे फाजिल दोस्त वापस आ चुके हैं मस्ती मैडनेस में। कोर्ट रूम में हमारा फाजिल दोस्त क्या कह रहा है?
1: बहुत बढ़िया बात बोली गई है भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने। क्या है कि आप किसी से मिले, आपका फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, कि अब आप शादी के लिए किसी से मिले कि भाई आप अब शादी करेंगे, ये है वो है, और उसके बाद आपके घर वालों ने या आपने जाके कुंडली मिलवाई और बोला कि अरे यार कुंडली नहीं मिलती तो अब हम शादी तो नहीं कर सकते। हाँ एग्जैक्टली। सो इस वजह से हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला है कि फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज के चलते अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं फिजिकल रिलेशनशिप तो फिर अंडर अ सर्टन सेक्शन विच इज 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता BNS आप चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आता सेक्शन 69 क्यों, बट एनीवे ये जो है
3: meant to be.
1: हाँ जी हाँ जी। तो ये है कि रिपीटेड अश्योरेंसेस आपने मैरिज दी हो, इंक्लूडिंग एंगेजमेंट अगर आपने करी हो, उसके बाद आपने कहा कुंडली नहीं मिल रही, कुंडली नहीं मिल रही, तोड़ दो टाइप्स, है ना। सो ये सारे काम जो है वो बिफोर एंटरिंग इनटू फिजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। सपोज आप और आपके होने वाले पार्टनर बाहर घूमने गए और आपको एकदम से फिजिकल रिलेशनशिप का मन किया, लेकिन आप नहीं कर सकते, आप एक दूसरे से एक सवाल पूछेंगे, ओए कुंडली मिली कि नहीं, करने से पहले।
3: ओके
1: हाँ।
3: अच्छा ये तब होता है जब लड़का लड़की दूसरे ट्रैक पे चल रहे होते हैं और फैमिली दूसरे ट्रैक पे चल रही होती है।
1: बिल्कुल,
3: कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, ये अपने स्पीड से चल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
3: इनकी स्पीड में ही आगे बढ़ चुके हैं।
1: सो आई थिंक इट्स अ कोऑर्डिनेशन इशू। इस समय माँ बाप और बच्चों के बीच की कोऑर्डिनेशन, अगर तुम छुपके मिल रहे हो और तुम्हारा फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, तब तक माँ बाप के पंडित जी ने आके बोल दिया सॉरी नो मैच, फिर तुमने अगर छोड़ा तो तुम्हें जेल हो सकती है, ठीक है। सो प्लीज
3: तभी ये दफा 69 है, बिकॉज तुम मेरी सुनो मैं भी तुम्हारी।
1: एग्जैक्टली।

0: ये आई थिंक दिस इज यूनिवर्सल थिंग. लेट मी टेल यू, लेट मी ट्राई एंड टेल यू. ओके,
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो. दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती.
2: रेडियो मस्ती 24/7. जी हाँ, गाने चल रहे हैं, बढ़िया बातें हो रही हैं, उससे भी ज्यादा बढ़िया. और इस समय हम आपको बताएं कि आज तो 8 तारीख हो गई है मई की, वो भी बहुत बढ़िया.
0: हाँ जी, तो मैं कहने की कहीं कोशिश कर रही थी कि नासा के अपोलो एरा के स्पेस सूट्स की बात कर रही हूँ.
2: हाँ,
0: ठीक है.
2: हाँ,
0: तो जब ये स्पेस सूट्स बना रहे थे तब नासा को एक टेक्निकल इश्यू एक्चुअली में फेस करना पड़ा विद रिगार्ड्स टू द यूरिन कलेक्शन डिवाइसेस, जो कि स्पेस सूट्स के अंदर उसको जो है यूज किया जाता है.
2: जी,
0: तो ये जो लेटेक्स के स्लीव्स थे दे ओरिजिनली केम इन 3 साइजेस, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज.
2: हाँ,
0: तो होता क्या था कि एस्ट्रोनॉट्स जो है, बंदे जो है, दे कंसिस्टेंटली पिक्ड अप लार्ज साइज. ठीक है, होता कुछ ऐसा था कि इट लेड टू इम्प्रॉपर फिट्स एंड मेसी लीक्स मिशंस के दौरान.
2: हाँ,
0: ठीक है. अब कैसे किया उन्होंने सॉल्व प्रॉब्लम?
2: हाँ,
0: ठीक है. तो इंजीनियर्स जो है उन्होंने रीनेम कर दिया द साइजेस टू लार्ज, जाइगेंटिक एंड ह्यूमंगस.
2: तो फिर सब लार्ज लेने लग गए, फिर से हो गया स्मॉल. क्या बात है भाई, मतलब दिमाग तभी तो नासा है ना, नासा है ना, दिमाग तो लगा.
0: दिस वाज सो कूल एंड देन इट एंश्योर्ड दैट ऑल द मेन सिलेक्टेड द करेक्ट साइज उनके एक्चुअल फिजिकल नीड्स के हिसाब से विदाउट ब्रूजिंग देयर ईगोस
2: एंड गोइंग विद द राइट ट्रैक राइट नाउ. हुसन तेरा तौबा तौबा.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: And on Radio Musti 24/7, जी हाँ, इस समय हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे स्पोर्ट्स की तरफ. जी हाँ, खेल की दुनिया से ये वाली खबर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए.
2: मस्ती मैडनेस, जहाँ न्यूज भी होती है
3: तरह तरह के खेल, ऑल टाइप ऑफ खेल्स वी टॉक अबाउट ऑन मस्ती मैडनेस. ये कौन सा वाला खेल है रेणुका?
1: हाल ही में मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि हम गेम्स खेल रहे हैं हम सब मिलके, आ जाओ घर पे. मैंने कहा मैं फ्रेंड्स के साथ गेम्स नहीं खेलती. They said please can you just stop. बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 बात हो रही है स्पोर्ट्स की. जी हाँ, हाल ही में एक न्यूज थी सुर्खियों पर कि स्वीडन ने ऑफिशियली सेक्स को एक स्पोर्ट डिक्लेयर कर दिया है. आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा. टर्न्स आउट दैट इट इज चाहे आप बहुत दुखी होंगे सुनके, लेकिन इट्स फेक न्यूज. सो बात कुछ ऐसी है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने अप्लाई किया था. हाँ, मुझे तो लगा था फाइनली वी कैन बी स्पोर्टी इन लाइफ, बट नहीं हो पाया. सो एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने अप्लाई किया था सरकार को, स्वीडिश स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन को, कि भाई एक स्वीडिश सेक्स फेडरेशन भी होना चाहिए. लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी एंड स्वीडिश गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्पोर्ट या चैंपियनशिप ऑथोराइज नहीं किया है. ओरिजिन कहाँ से हुआ इस रूमर का, कि ड्रैगन ब्राटिक जो एक आदमी है, इंसान है स्वीडन में, वो एक स्ट्रिप क्लब्स चलाता है, स्ट्रिप क्लब्स, ओके, एंड ही वॉन्टेड टू रजिस्टर स्वीडिश सेक्स फेडरेशन ताकि वो कॉम्पिटिशन होस्ट कर सके अपने स्ट्रिप क्लब्स में. ओके, फिर ऑफिशियली स्वीडिश स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन ने कहा कि हम ऐसा कुछ रिकग्नाइज नहीं करेंगे. स्पोर्ट्स को तो रहने दो आप इसको, ठीक है, आपने बाकी जिस कैटेगरी में इसको जाके करना है आप करो. फिर उसके बाद ये सारी की सारी बड़ी बड़ी सी खबरें आ गई कि 2023 में अप्रूवल हो गया और सेक्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया. फिर उसके बाद में स्वीडन गवर्नमेंट ने आके ही बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, किसी ने देखा नहीं है, फालतू बातें बंद करो.
2: हाँ जी, हाँ जी, ये कुछ बातें ना लोगों के ख्याल में आती है, ख्याल में ही होती है, पकती है, वही रह जाती है. और उसके बाद आजकल तो फिर ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि कौन सी न्यूज सच है कौन सी झूठ है.
1: बिल्कुल,
2: वेरी वेरी टफ.
1: बट बंदे का बिजनेस प्लान देखो कि पहले ना मैं ना स्ट्रिप क्लब खोलूंगा, फिर ना उसके बाद मैं ना वहां पे सेक्स कराऊंगा और फिर कॉम्पिटिशन कराऊंगा. मतलब रियली रियली
2: बट वैसे रेणुका कुछ भी हो सकता है. अब आई थिंक आफ्टर 9 इयर्स ऑफ मस्ती मैडनेस वी कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कुछ भी कहीं भी हो सकता है.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20।
0: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार, रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7. मैं दूसरे घंटे का एंड हो रहा है पर आज ना अंतरा प्रिपेयर्ड नहीं है, न्यूज नहीं है, न्यूज नहीं है, न्यूज.
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
4: ये फालतू में इन्होंने यहाँ पे चिपका दिया. कोई रीजन नहीं था इसका, कोई जरूरत भी नहीं थी इसकी, तो इन्होंने ऐसे बोल दिया. बट वेल, न्यूज देती हुई मैं जो इनके हिसाब से नहीं है. भाई एक मम्मी जो है वो उन्होंने अपना जो एक तो आजकल हर कोई वीडियो डालने लग गया. आई थिंक सम मॉम्स हैव रियली फिगर्ड इट आउट एक्सेप्ट फॉर हर मॉम्स जो कि अभी भी फिगर आउट कर रही है बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज्यादा तेजी से. तो कुछ ऐसा है कि ये आंटी जो है सो शी मेड शी सेइंग शी इज रैंटिंग बेसिकली कि मेरी बेटी जो है अब शादी लायक हो चुकी है और उसने ना डॉक्टरी पढ़ी हुई है तो हम उसके लिए लड़का देख रहे थे. तो जब लड़का देख रहे थे तो ये भाई सेम ही प्रोफेशन का होगा तो सही होना चाहिए, एक दूसरे के प्रोफेशन को समझेंगे, ऑल दोस थिंग्स. बट क्या हो गया है आजकल के लड़कों को, आजकल के 30-34 ईयर्स के लड़के, कोई गंजा निकल रहा है तो कोई यू नो अंकल जैसा दिख रहा है तो कोई ऐसा हो रहा है. अब ऑब्वियसली बेटी ने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, वो अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान भी रखती है, तो उसको बंदा भी दिखने वाला तो मतलब थोड़ा सा प्रॉपर जो अपना ख्याल रखता हो वैसा वाला कोई चाहिए. तो मतलब आज कल के इस शादी वाले मार्केट में तो क्या हो गया है, लड़कों को कोई मिल ही नहीं रहा है. ये तो आंटी की रैंट थी पूरी लाइक A to Z कि भाई उनके बेटे को नहीं मिल रहा है लड़का, क्योंकि बेटी की बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस है और सारे चेकबॉक्स पे टिक नहीं हो पा रहा है. और लड़के उन्होंने बोल दिया कि सारे अंकल आजकल दिखते हैं किसी की टोन बड़ी हुई है कभी किसी से. नीचे कमेंट्स भाई, ओ माय गॉड, अलग ही. आंटी आपके बेटे की एज क्या है, आंटी हमने तो आपकी बेटी को देखा भी नहीं है अभी, दिखती कैसी है, तो आप कह रहे हो सुंदर है. आप उनका दिखाओ जरा फोटो तो हम भी देखें कि कितनी सुंदर है, जिसकी वजह से जो है सारे चेकबॉक्स नहीं हो रहे हैं आपके. फिर उसके बाद तो भाई लड़कों ने कि इतना सारा मतलब उसने अपनी जिंदगी में कितना सैक्रिफाइस किया होगा, इसीलिए उसके बाल झड़ गए होंगे, इसीलिए उसने अपने ध्यान नहीं दिया होगा, और उसको आप ऐसे कह रहे हो कि 30-34 में ऐसे कोई ना डॉक्टर बन जाता. ओह माय गॉड,
2: ये भी एक कहानी है भाई. क्या है कि लगी बहुत जोर से सुलगी, क्योंकि क्या है ना जिंदगी भर लड़की चाहिए फेयर, टॉल, स्लिम कॉम्प्लेक्शन, फलाना ढमकाना, टी टोटलर, हाउस होम मेकर, पढ़ी लिखी, पैसे भी लाए, घर भी दे. लेकिन अब जब आदमियों पे एक छोटी सी लगी तो लगी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है. अगले घंटे मिलेंगे क्या इनको और खबरें बताने के लिए.
4: जी जी जी, इतने क्राइटेरिया तो मतलब वुमेन हैव बीन गोइंग थ्रू सो मेनी क्राइटेरिया फॉर अ वेरी गुड लॉन्ग टाइम.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 पर। भाई मैं तो कब से इंतजार कर रही थी ऐसी वाली सजेशन का, तो भाई आपको भी पसंद आए कि नहीं हमें बताइए जरा।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: कैसी वाली सजेशन? वैसे रेणुका, आपके वो डॉक्टर साहब बड़े दिन से आए नहीं है जो चिटस लगाते थे चिटस
0: देखो कैसा इम्पैक्ट छोड़ के गया कि तुम आज से पूछ रही हो उनके बारे में एक्चुअली। ओके, सो हम बात करेंगे। हमें पता है कि भाई भारतवर्ष में जब डाउरी बैन हो चुकी है, दहेज देना पाप है, राइट, और लेना तो उससे भी बड़ा पाप है, तो ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं इनके खिलाफ फिर भी अभी तक लोग बात करते हैं लेकिन एक्शन बहुत कम होता है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट गाड़ियां भी देते हैं लोग दहेज में, एज वी नो, राइट। सो एक एजुकेटर है फैजल खान साहब, पटना में रहते हैं, यूट्यूब टीचर है, एंड ही इज नोन फॉर हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्वाइट ऑफन ह्यूमरस टेक्स ऑन सोशल इश्यूज। तो उन्होंने पिछले ही साल में क्या किया था कि एक ऑनलाइन बहुत ही मेजर आर्ग्यूमेंट शुरू करा दिया था अबाउट द डाउरी सिस्टम इन इंडिया। तो उनसे जब बात करी गई तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि जब डाउरी में गाड़ियां दी जाती हैं, ठीक है, दो जरूर दो, लेकिन डाउरी वाली कार का जो नंबर प्लेट है ना, इट नीड्स टू बी ऑफ अ डिफरेंट कलर। नाउ दैट कैन बी पिंक कलर नंबर प्लेट। तो उससे क्या है कि जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो आराम से एक बंदा देख के बोल सकता है वो देखो दहेज वाली कार चला रहा है, दहेज वाली। मुझे तो ये बात बहुत पसंद आई भाई, पिंक स्पेशल प्लेट कैटेगरी ओनली फॉर डाउरी रिलेटेड व्हीकल्स, ताकि सोशल स्टिग्मा और अवेयरनेस बढ़े। क्यों अंतरा, बात सही है कि नहीं है?
2: इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, बट वही हो जाता है ना कि लेना सबको है बट बताना और जताना आजकल लोगों को नहीं है। सो वो वाला चीज आ जाता है कि हाँ लेते हैं हम। अब दे हैव एक्चुअली, आपने देखा है उन्होंने नाम बदल दिया है कि ये तो वो अपनी बेटी को दे रहे हैं।
0: वो तो है, और दे तो बेटी को ही रहे होते हैं। ये बात अलग ये हो जाती है कि भाई शोशाबाजी है या वाकई बेटी को चलाने को मिलती है कि नहीं, इज ऑल्सो अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट या आई थिंक ऑल सेड एंड डन, गिफ्ट जो बेटी को दिया जाए इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो डाउरी में ही और ऐसे दहेज टाइप में दिया जाए तो नहीं यार, ऐसे नहीं होता यार। नहीं अंतरा, नहीं ना,
2: है ना, गवर्नमेंट रूल बना दो तो मजा ही आ जाए।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: this on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: भाई आपने भी देखे होंगे बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स बहुत ही निहायत ही खूबसूरत लड़कियों के, बट दे आर ऑल AI. मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस।
3: और इसी बात के खिलाफ पहले इंस्टाग्राम पे जब सारे मेकअप वाले लोग होते थे, फिल्टर्स यूज करते थे, तो सब लोग कॉम्प्लेक्स के मारे मरे जाते थे। और अब AI तो मतलब ऐसी परफेक्शन होती है कि लगता है हम पैदा ही क्यों हैं इस दुनिया में गैस।
2: And most of the times, and they are having insane amount of followers. भाई मतलब लोग पैसे दे दे के सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको कि ये तो बढ़िया है यार। हाँ। ये तो कितनी खूबसूरत है, and all those things. But taking the exact advantage of that is this Indian 22-year-old guy, okay? Indian medical student जो है, इसने क्या किया, ये US गया भी नहीं, ये अपना पैसे बनाना चाहता था कि बाद में जाके US में ये पढ़ाई कर सके, बट ये बैठा हुआ है इंडिया में. Okay, he created this very very highly successful AI generated influencer बनाई इसने, ठीक है। बहुत सारे American conservatives जो है उनको अच्छा खासा पूरा लपेटे में इसके साथ में ले गया। So he's an aspiring orthopedic surgeon, Sam नाम है इसका, and financial struggles हो रहे थे जब ये prepare कर रहा था exams वगैरह के लिए। फिर उसने use किया generative AI tools जैसे Gemini वगैरह, and Emily Hart नाम की ये fictional blonde registered nurse resembling Jennifer Lawrence create कर डाली। अब उसके बाद उसको present किया as a patriotic MAGA supporter। और भाई उसके बाद से जो उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बड़े हैं, शी वेंट वायरल, ठीक है। उसके इंडिविजुअल रील्स जो है वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज में जाते हैं, 10,000 फॉलोअर्स विद इन वीक्स, एंड ही मोनेटाइज दिस पर्सोना सब्सक्रिप्शन के थ्रू। 30 से लेकर 50 मिनट रोज का वो लगाता था एक कंटेंट अपलोड करने में, एंड ही अर्नड लाइक क्रेजी।
3: Wow, मतलब seriously, AI is changing lives, man. भाई ऐसा ही होता है आजकल तो, हर चीज यूं फटाफट दो मिनट में, इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मुझे बहुत डर है, मैंने पिछले भी शो में कहा था, मुझे सबसे बड़ा डर इस बात का है कि हमारे बच्चे, जो पता नहीं आगे जाके दिमाग होगा नहीं होगा, नहीं भी होगा, दिमाग के बिना भी पैदा हो जाएंगे तो भी जिंदगी में कुछ बन जाएंगे, क्योंकि AI तो चलाना आना है ना। सैड यार, रियली सैड।

0: कुछ समय पहले की बात है कि एक औरत ने अपनी शादी जी हाँ कैंसिल कर दी, क्योंकि जो होने वाला दूल्हा था वो बेसिक मैथ्स टेस्ट हार गया, फेल हो गया।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: नो कमेंट्स।
0: नहीं, मगर ये नेक्स्ट लेवल की खबर है मस्ती मैडनेस पर रेणुका अनंत्रा। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट ऑल द ऑफबीट खबरें फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो इंडियन ब्राइड है, इसने अपनी कैंसिल क्यों करी थी शादी? वेल, बिकॉज उसको ऐसा लगा था कि उसके माँ बाप ने उसकी लड़के की एजुकेशन के बारे में झूठ बोला था। ओके, एंड शी हैड ऑलरेडी अर्लियर सेड कि भैया मैं किसी इलिटरेट से शादी नहीं करूंगी, मेरे को एक सर्टन लेवल का आदमी चाहिए, चाहे मैं जैसी भी हूँ, बट मेरी ये एक रिक्वायरमेंट है। तो शादी करने से पहले, जब अभी मतलब पहुंच चुके थे शादी करने के लिए, वहां पर इसने बोला 15+6 कितने होते हैं जी? ओके, और हाँ मतलब 15 और 6 ऐड करके बता दे भाई, तो उसने बोला 17। ठीक है, अब फॉर ऑल दोज पीपल हु डोंट नो, आपकी शादी पे 21 बोलना, ठीक है, हो जाएगी शादी। तो फिर क्या हुआ, अब ये रसूलाबाद विलेज जो कानपुर के पास है अंतरा, तुम्हें तो पता ही होगा, वहीं की बात है ये। एंड जैसे शक हुआ ये सब इसने किया, उसके बाद फेल हो गया वो, तो फिर वो ब्राइड तो बाहर चली गई, वेडिंग वॉज कैंसल्ड, और जो गिफ्ट्स और ज्वेलरी वगैरह थे पहले के, वो सब एक्सचेंज हो गए, वापस हो गया। बोला कि ऑनेस्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट दैन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तुम लोगों ने झूठ बोला, एंड दैट इज वाई वी आर वेरी अपसेट।
2: All said and done, मतलब शादी वाले दिन 15+6 क्या होता है ये कौन पूछता है?
0: That is
2: not bad.
0: अच्छा, you have to look at the deeper reason. Come on, ऐसे नहीं।
2: I am also, so you have to give us another, you know, दूसरा point of view भी तो देना चाहिए ना, एक ही point of view से थोड़ी ना बात करनी चाहिए। कोई मतलब sane बंदी आकर दुल्हन के जोड़े में आके बोले, पहले तो बता 15+6 क्या है, बता अभी।
0: और वो
2: 2+2,
0: और वो जिसने कहा था कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो 17 आंसर दे, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है।
2: अच्छा, वो नर्वस भी तो हो सकता है ना, इतनी ब्यूटीफुल होगी, वो नर्वस हो गया

0: गया हो देख के
1: ये शादी करा के रहेगी और मैं नहीं होने दूंगी ये शादी.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक, नॉनस्टॉप मस्ती, ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट

0: मेरे को इसका फंडा कुछ समझ में नहीं आया, बट ठीक है अब कराया होगा इसने, चलो बताती हूँ।
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिक।
2: रेडियो मस्ती 24/7 गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। 8 मई को आप पहुंचे हैं, और अगर आप इसका ऑनकोर सुन रहे थे या हैं तो ये है 9 मई। जी हाँ, सैटरडे
0: की शाम। और हाँ, कुछ
2: सैटरडे की शाम इस समय 8 बजने वाले हैं, मतलब यही मैं बता सकती हूँ, और क्या बता सकती हूँ।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो भाई मेरे को ये बताओ रेणुका, ये आजकल ये जो डीएनए टेस्ट वगैरह ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गए क्या? लाइक कोई भी करा सकता है?
2: हाँ बिल्कुल।
0: इज इट दैट?
2: बिल्कुल, देयर हैज टू बी अ रीजन, अ गुड रीजन, एंड बोथ पार्टीज हैव टू एग्री, फिर कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: Anyways, this man, he got furious, apparently. और क्योंकि जो वाइफ है, वाइफ तो जा चुकी, ठीक है, और ये बंदा कैमरे में पकड़ा गया क्योंकि वो ग्रेव पे जाके उसके ग्रेव के ऊपर लाठियां मार रहा है, बहुत ही गुस्से में।
2: क्यों?
0: हाँ, क्योंकि डीएनए टेस्ट जो है उसमें रिवील हुआ, नन ऑफ द 6 चिल्ड्रन ही रेज्ड आर हिज।
2: I don't blame him.
0: हाँ, but वही मैं पूछ रही थी कि लाइक जाने के बाद अचानक से उसको क्या सूझा होगा कि इसने डीएनए टेस्ट कराया?
2: हाँ, और क्या फायदा, अब वो तो मर गई
0: क्या? हाँ,
2: खुद भी जीते जी मर जाएगा सोच सोच के, मतलब जब जिंदा थी तो करना चाहिए था ना। आपका ढिंढोरे पीट, अब तो ढिंढोरा ही बाजेगा ना, क्या फायदा बताओ।
0: मतलब I feel his pain, that is like बिल्कुल पूरा जो है हमारा, हमारी सांत्वना उसके साथ है, लेकिन जो उसके साथ थी वो तो नहीं है ना, और वो तो चली गई ना, और फिर वो डीएनए करा के फायदा क्या हुआ? और ये ऐसे मरने के बाद क्यों कराया?
2: सांत्वना इसके साथ है क्या? वो जो मरी थी उसका नाम सांत्वना था, वो भी तो नहीं थी इसके साथ, दैट्स द होल पॉइंट। रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, टू बैड 6 बच्चे, भाई किसी की तो शक्ल नहीं मिल रही थी तेरे से, तू पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे जब पैदा हुए थे तब करा लेता डीएनए, तू मतलब बीवी के मरने के बाद क्यों करा रहा है भाई? व्हाई
0: व्हाई व्हाई
2: व्हाई, व्हाट्स योर पॉइंट नाउ? व्हाट

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: ओह माय गॉड अंतरा, मैंने तेरे को एक बात नहीं बताई. नाउ बिफोर वी लीव आई मस्ट टेल यू, यू नो व्हाट, कल शाम को आई गॉट द मैंगोज डिलीवर्ड फ्रॉम जीजी मार्ट. ओके, एंड आई एम टेलिंग यू, वो मैंगोज जिस तरह से वो हमें बता रहे थे कि उनके ऑर्गेनिक फार्म के मैंगोज हैं, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि जो खिले खिले आम यहाँ पे दिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रिजर्वेटिव्स बहुत होते हैं, तभी ये लोग बोलते हैं पहले बुकिंग कराओ और हम आते ही तुम्हारे घर में डिलीवर कर देंगे, यू नो हाउ इट इज. सो माई गॉड द टेस्ट, यू जस्ट कैनॉट बीट इट. मैंने जिंदगी में ऐसे आम नहीं टेस्ट किया फॉर श्योर.
1: मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
2: मैंने तो आपसे कहा ही था, जब व्हेन आई ट्राइड देयर आर्म आई वाज लाइक दैट, आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड आई एंजॉयड एंड रिलिश्ड इट सो मच कि भाई मैंने तो ऑन एयर जाके बताया कि जीजी मार्ट ऑनलाइन से जाके आम मंगा लो, यू विल एक्चुअली नॉट रिग्रेट. जो और प्लस उनका जो उसमें वेबसाइट में भी लिखा हुआ है दो दैट उनका अगर दो से ज्यादा आम अगर थोड़े से वैसे खराब से निकलते हैं देन दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ इधर रिफंड कर रहे हैं या फिर उसको चेंज करने को, दैट इज ऑल्सो आई थिंक अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग पॉइंट. नॉट एवरीबडी डज
0: नोबडी
2: राइट, एस्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स.
0: एब्सोल्युटली, ऑनलाइन ओनली इफ यू आर श्योर ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट विल यू एग्री कि भैया पहली बात तो कुछ उसमें गलत निकलेगा ही नहीं, और अगर निकला तो मैं वन टू वन उसी टाइम एक्सचेंज करूंगा, बिकॉज डेफिनेटली ये मेरा काम है ही नहीं. आई बिलीव इन क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, राइट? एंड दैट इज जीजी मार्ट ऑनलाइन फॉर यू गाइज. जस्ट गो चेक आउट देयर वेबसाइट, वहां पे रजिस्टर कर लो अपना आईडी और उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट भेज दो ताकि हम आपको डिस्काउंट कोड दे दें, और डिस्काउंट कोड आते ही यू कैन ऑब्वियसली एंजॉय इट, ऑलराइट, एंड गेट डिस्काउंट. चलिए, ओके, टेक केयर, एंड हम तो यहां से अब निकलते हैं और इस वादे के साथ कि हम बहुत जल्द वापस आएंगे. Desperado, Desperado, in this together we live or we die. ओहो, क्या बात है, in this world we live together or die. ये टेशर के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अंतरा, तुमको?
2: बिल्कुल. तो हम में रेणुका विल सी यू वेरी वेरी सून. हम अच्छा तो हम चलते हैं,
0: इस बारे में हम अभी बात करेंगे, हम बात करके रिजॉल्व करके आगे बढ़ेंगे लाइफ में.
2: नहीं, नहीं.

0: your passport to the world every Monday morning. From global headlines to a pinch of Bollywood spice.
1: The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out. Josh Mera.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा केजी मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी,
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
4: क्या जी?
5: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
4: वाजी, क्या बात जी.
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
4: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
5: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
4: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
5: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

जिनाबी तुम जाने बेजाने लगते हो। अरे मैं भी जाना बेजाने लगूंगा, मेरी आवाज जरा गौर से सुनिए तो सही। मेरा नाम है जमर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर कर रहा हूँ आपका इस्तकबाल। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल सिंगापुर, कैसे हैं आप? सारूच है, अरे अखा सिंगापुर मारूच है। तो आज यादों का कारवां में हम आपको ले चलेंगे 1974 के साल में, उस दौरान आई जबरदस्त हिट फिल्मों का जिक्र करेंगे और कुछ उनके पीछे के ऐसे रोचक किस्से जो आप सुनना चाहेंगे, जो शायद आपको पता ना हो, शायद पता भी हो, कोई बात नहीं, यादों का कारवां है, बेहतरीन गानों के साथ इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली फिल्म जो 1974 की हम ले रहे हैं वो है अजनबी। बॉलीवुड की फिल्मों में गानों को फिल्माना एक सबसे बड़ा चुनौती रहा है, रहता भी है। अब देखिए होता भी है, ये दर्शक जो होते हैं वो पहले गाना सुनते हैं फिर गाना देखते हैं, तो गाना अगर पसंद आ गया तो वो फिल्म भी देख लेते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं ना फिल्म देखने के। तो ये बात आज की नहीं है, बहुत पहले से भी यही होता आ रहा है, गानों का रिकॉर्ड अगर हिट हो गया तो फिल्म देखने चले जाते थे। तो फिल्म मेकर्स अपने गानों को बेहतरीन बनाने के लिए कई तरह के फंड अपनाते हैं। हाँ यकीन मानिए, अब आप ये सोचिए कि जितना वो गाने के बोल पर ध्यान देते हैं, उसके म्यूजिक को निखारने संवारने में जितना ध्यान लगाते हैं, जितना पैसा लगाते हैं, उतनी ही कोशिश वो करते हैं गाने की लोकेशन तलाशने में भी, ताकि गाना कमाल का बन जाए। अब सोचिए लोकेशन विदेश की हो सकती थी, हिंदुस्तान के किसी खूबसूरत वादी की हो सकती थी, यहाँ तक तो ठीक है, पर अगर लोकेशन कोई ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन के ऊपर की हो तो क्या कहिएगा, बताइए। दरअसल बॉलीवुड फिल्मों में चलती ट्रेन में गाना शूट करने का चलन शुरू हुआ था 1974 में आई फिल्म अजनबी से ही। चलती ट्रेन पर पहली बार फिल्माया गया था गाना, वो गाना याद है आपको, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जी ये गाना पहला गाना था जो चलती ट्रेन पर पिक्चराइज किया गया था, और इस गाने में राजेश खन्ना साहब और जीनत अमान के मस्ती भरे अंदाज ने तो जैसे तड़के का काम कर दिया था, बस फिर क्या था। इसके बाद तो बॉलीवुड में ट्रेन पर गाने शूट करने का चलन सा बन गया था। वैसे अजनबी फिल्म का सिर्फ यही गाना हिट नहीं था, बल्कि तमाम गाने इस फिल्म के जुबान पर चढ़ गए थे उस वक्त दर्शकों के, जैसे भीगी भीगी रातों में, ये इसी फिल्म का गाना था, और एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, इसे कैसे भूल सकते हैं आप। तो एक से बढ़कर एक गाने इस फिल्म में, और इसीलिए ये फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट। तो आज की इस सुपर डुपर हिट फिल्म से हम शुरू कर रहे हैं, उसके गानों से शुरू कर रहे हैं यादों का कारवां। आप बने रहेगा समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव के इस बेहतरीन सफर पर। स्टे कनेक्टेड।

0: Gigi Mart. Order now at gigimartonline.com or call 8085-6577.
1: वेलकम बैक। समर है मेरा नाम। 1974 की फिल्मों का जिक्र करना है आज मेरा काम। जी आज यादों का कारवां गुजर रहा है 1974 के ईयर से और रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव से मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ आपका दिल खोल कर दोनों बाहें फैला कर स्वागत। वेलकम बैक। तो अब हम अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। ये थी आपकी कसम। और आपकी कसम क्या कमाल की फिल्म थी। बहुत ही कमाल की, बहुत जबरदस्त इसकी कहानी थी, जबरदस्त और कमाल का डायरेक्शन था और बहुत ही कसा हुआ डायरेक्शन था और बहुत ही कमाल का म्यूजिक था। म्यूजिकल हिट, राजेश खन्ना साहब की फिल्म। राजेश खन्ना साहब उस वक्त टॉप पर चल रहे थे और एक मिडास टच था उनके पास। जिस फिल्म को वो छू रहे थे वही सोना उगल रही थी, सोना बन जाती थी, मतलब कि वो सभी फिल्में हिट हो जाती थी भाई। और जहां तक जोड़ी की बात है तो उनकी कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ी जमी, पर दर्शकों ने जितना राजेश खन्ना और मुमताज साहब की जोड़ी को पसंद किया उतना तो शायद ही किसी और को किया होगा। सबसे ज्यादा हिट इसी जोड़ी ने दी राजेश खन्ना साहब की फिल्मों में। अब उस धमाकेदार सॉन्ग को कोई कैसे भूल सकता है भाई। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का भी आपकी कसम का ही ये जबरदस्त गाना था। आनंद बख्शी और आरडी बर्मन के साथ किशोरदा की तिकड़ी का जलवा इस फिल्म में भी देखने को मिला और जलवा भी ऐसा कि वो आज तक बरकरार है और शायद आगे भी बना रहेगा। वैसे इस गाने से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। हुआ यूं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी ओम प्रकाश अपनी पहली फिल्म बना रहे थे आपकी कसम, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म के गाने बहुत ही हिट रहे थे, खास तौर से करवटें बदलते रहे, सारी रात हम, इसका टाइटल ट्रैक था आपकी कसम आपकी कसम। और एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। लेकिन जय जय शिवशंकर बहुत ही मस्ती भरा गाना है और इसका जिक्र अगर मैंने नहीं किया तो फिर क्या किया। तो इस गाने के पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो कहानी कुछ इस तरह की है कि जब आरडी बर्मन साहब इस गाने को बना रहे थे तो उन्होंने इसकी खास तैयारियां की थी। ये गाना एक बहुत बड़े समूह पर पिक्चराइज किया जाने वाला था, इसलिए बर्मनदा चाहते थे कि वो एक्स्ट्रा म्यूजिशियंस और कोरस गाने वाले लोगों को ले आए। उन्होंने कर भी दिया, लेकिन इससे गाने का बजट बढ़ गया। पहले इस गाने की लागत थी 25,000 रुपए, जो बढ़कर 50,000 रुपए हो गई। अब जब ये बात जी ओम प्रकाश साहब को पता चली, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, तो वो तो भैया बहुत ही बौखला गए। उन्होंने कहा, ये क्या बात है, चलो ठीक है इतना पैसा खर्च भी कर दूं मैं, लेकिन इसके बाद भी अगर गाना अच्छा नहीं बना तो। बार बार वो 50,000 खर्चा कर दिए, 50,000 खर्चा कर दिए, ये बड़बड़ाने लगे, कहने लगे। तो साहब ये बात किशोरदा को सुनाई दे गई जब वो रिकॉर्डिंग के लिए आए तो, और उन्होंने आरडी बर्मन से सारा माजरा पूछ लिया। बर्मनदा ने उन्हें कहा कि यार देखो तुम टेंशन वेंशन मत लेना, जमकर गा लो, दिल लगाकर, बस मस्ती डाल दो इस गाने में, रिकॉर्डिंग शानदार होनी चाहिए। बहरहाल गाना रिकॉर्ड होने लगा, किशोरदा ने अपनी आवाज में पूरी मस्ती घोलते हुए उस गाने को गा दिया। सब सही जा रहा था तभी अचानक उनको शरारत सूझी। इस गाने के एंड में ना म्यूजिक तेज हो जाता है और वहाँ किशोर ने अपनी मर्जी से ही कुछ गा दिया जो लिरिक्स में था ही नहीं। आप जरा गौर से सुनिएगा जब वो एंड में कहते हैं, बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, अरे बजाओ, 50,000 खर्चा कर दिए, बजाओ बजाओ। जी ओम प्रकाश साहब की 50,000 वाली रट का ये किशोरदार स्टाइल बदला था, वो गाने का हिस्सा वैसे रखा गया और आज तक इस गाने में किशोरदा की वो शरारत छुपी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो गाना जरूर सुनवा दूं और कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक गाना वो अपनी मर्जी से सुना दें, क्योंकि ये एल्बम कमाल का है, इसमें से एक गाना सुनना तो नाइंसाफी होगा और सुनाना भी। तो कंप्यूटर जी दो गाने आपकी कसम से प्लीज, आपको कसम है मेरी। आप सुन रहे रेडियो 24/7 लाइव पर समर के साथ यादों का कारवां। बस मैं यूं गया और यूं आया। 1974 है आज चर्चा में।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। 1974 के साल से गुजर रहा है आज यादों का कारवां। मैं इस कारवां में आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। तो चलिए अब अगली फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। आपने ऑलराउंडर वर्ड तो जरूर सुना होगा, अक्सर इसे क्रिकेट की लैंग्वेज में यूज किया जाता है, लेकिन क्या आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी किसी पर्सनैलिटी के नाम को गिना सकते हैं जो इस फील्ड में ऑलराउंडर रही हो? सोचिए। वैसे जहां तक बीते दौर की फिल्मों का सवाल है, तो उनमें राज कपूर साहब, किशोर कुमार और मनोज कुमार साहब के नाम इंडस्ट्री में एज ऑलराउंडर लिए जा सकते हैं। अब देखिए ना, ये तीनों ही अपने जमाने के धुरंधर रहे हैं, चाहे डायरेक्शन की बात हो, प्रोडक्शन की बात हो, डायलॉग्स हो, एक्टिंग हो, हर बात पर इनकी मास्टरी रही है। क्यों, इत्तेफाक रखते ना मुझसे आप? खैर, जैसा कि मैंने अभी मनोज कुमार साहब का जिक्र किया, ज्यादा जोर लगाकर जिक्र किया, उनमें भी जबरदस्त काबिलियत थी। फिल्म के जरिए वो अपनी बात को लोगों तक सटीक तरीके से पहुंचाने की समझ रखते थे, और इसका एक बड़ा एग्जांपल हम देख सकते हैं 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में। वाह, क्या कमाल की मूवी थी ये। आज भी जब इस फिल्म को देखने बैठता हूँ तो पूरी फिल्म देखे बगैर उठ ही नहीं पाता, कमाल की ये। वेल, इस एक फिल्म में मनोज कुमार अकेले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एडिटर और एक्टर की भूमिका में दिखाई दिए थे। अब बताइए, मनोज कुमार थे ना ऑलराउंडर। बहरहाल, इस फिल्म से जुड़ी एक मजेदार बात भी है, और वो ये कि फिल्म में मनोज कुमार साहब का नाम भारत रखा गया है और फिल्म के कई हिस्सों में महंगाई का जिक्र भी हुआ है। यहाँ तक कि पूरा गाना ही महंगाई पर है। हाय हाय महंगाई महंगाई महंगाई, तू कहां से आई, तुझे क्यों मौत ना आई, नरेंद्र चंचल की आवाज में गाना। अब सोचिए, 44 साल के करीब हो रहे हैं, ऐसा लगता है मनोज कुमार साहब आज के हिंदुस्तान का फोरकास्ट तभी लिख गए थे। इंडिया में आजकल बहुत महंगाई है भाई साहब, और शायद इसीलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेकर सीन क्रिएट किए थे। तब के डायलॉग्स और सीन्स आज भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं फूड, क्लोथ एंड शेल्टर की, मेरा मतलब रोटी कपड़ा और मकान की। तो इसमें कुल 5 गाने हैं, गानों को म्यूजिक मिला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जुगल जोड़ी का, और आवाज मिली है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर साहब की। वैसे यहाँ एक बात और बता दूं मैं आपको, अमिताभ बच्चन साहब और शशि कपूर साहब की सुपरहिट जोड़ी की ये पहली फिल्म थी। इसके बाद इस जुगल जोड़ी ने 10 से भी ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि फिल्म ने एक ऐसा जबरदस्त असर छोड़ा कि मनोज कुमार साहब का निकनेम ही भारत पड़ गया, भारत कुमार, है ना कमाल की बात। तो बहरहाल, इस नॉलेज, इस जानकारी के बाद आपको सुना देता हूं इस फिल्म से ये गाना। आप सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर, यादों का कारवां समर के साथ।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: Well, I hope कि आपको मजा आ रहा होगा सिंगापुर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां, और आज हमारा कारवां गुजर रहा है 1974 के साल से। मैं हूँ समर आपके साथ। देखिए, ये जो 1974 का साल था ना, इसमें बैक टू बैक कई जबरदस्त फिल्में रिलीज हो रही थी। अभी एक तो जिक्र किया मैंने रोटी कपड़ा और मकान का, तो ठीक इसी नाम से जुड़ी एक और फिल्म आई थी, नाम रखा गया था इसका रोटी। अब बताइए नाम में है ना कितनी सिमिलरिटी, मतलब रोटी कपड़ा और मकान की सिर्फ रोटी भी एक कमाल की हिट फिल्म थी। और ये फिल्म 18 अक्टूबर 1974 को रिलीज हुई। सोचिए सिनेमा गोअर्स का क्या हाल हुआ हुआ उस वक्त। एक जैसी नाम की दो मूवी और दोनों ही लाजवाब। किसे मिस करें, किसे देखें, किसे नहीं देखें, ये सवाल उनके दिमाग में जरूर कौंध रहे होंगे। बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ उन्होंने, और हुआ यूं कि लगभग सभी ने दोनों ही फिल्मों को खूब पसंद किया। वेल, जहां तक रोटी मूवी का सवाल है, तो मनमोहन देसाई साहब ने इसे डायरेक्ट किया और लीड डायरेक्टर राजेश खन्ना साहब ने रजनी देसी के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया। एक्शन का तड़का लगी इस फिल्म के डायलॉग्स तो कमाल के थे ही। कमाल इसलिए क्योंकि इसके पीछे कादर खान साहब का टैलेंट बिखरा हुआ था। वाकई डायलॉग्स ही थे जो इस फिल्म की जान रहे हैं। बताते हैं कि इन दमदार डायलॉग्स के लिए उस वक्त कादर खान साहब को करीब 1,21,000 रुपए का अच्छा खासा पेमेंट किया गया था। ये रकम तब कोई छोटी मोटी नहीं थी। खैर, बॉक्स ऑफिस पर रोटी सुपरहिट फिल्म बनकर उभरी। सिर्फ राजेश खन्ना या मुमताज ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे दूसरे किरदारों ने भी अपने दर्शकों का दिल जीत लिया। निरूपा रॉय, जगदीप, पिंचू कपूर, जगदीश राज, विजू खोटे, ओम प्रकाश और असरानी के साथ जीवन भी इस फिल्म में याद रह जाते हैं। हर कोई अपने आप में कमाल था। 1959 में आई इंग्लिश मूवी द फेस ऑफ फ्यूजिटिव से ये इंस्पायर्ड थी। बहरहाल जनरल नॉलेज की बहुत सारी बातें हो गई, अब एक काम करते हैं, गाना वाना सुन लेते हैं, मजे कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। खट्टे मीठे कस्से लेकर मैं लौटूंगा, आप सुनते रहेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां। आज का सफर हमारा जो है वो गुजर रहा है 1974 के साल से। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों का हम जिक्र कर रहे हैं, उनके धमाकेदार सॉन्ग्स आपको सुनवा रहे हैं। तो आपने अभी तक जान लिया होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस वक्त किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। वैसे हमेशा होते रहते हैं, और इनफैक्ट किस हद तक जाकर रिस्क उठाए जा रहे थे। और क्या, अब ये रिस्क नहीं है तो क्या है? एक जैसे मिलते जुलते नामों की फिल्म बनाना, रोटी और रोटी कपड़ा और मकान, ये रिस्क ही तो है। और दोनों टॉप एक्टर्स के साथ एक ही दिन रिलीज हुई है ये फिल्में दोनों, लेकिन दोनों ही चली। जबकि प्रोड्यूसर्स को ये पता था कि ये एक साथ रिलीज करेंगे तो बहुत नुकसान कर सकती है एक दूसरे को, लेकिन दोनों ने नहीं किया क्योंकि दोनों की कहानी अलग तरह की थी। और यकीन मानिए, इन दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये दोनों ही हिट हो गई। खैर, चलिए बात करते हैं अगली फिल्म की जो इस दौर में आई थी। वो थी, चलिए हिंट देता हूँ, उसके नाम से एक नहीं बल्कि तीन तीन फिल्में बन चुकी हैं। जरा अंदाजा लगाइए किस फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ मैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ 1974 की फिल्म चोर मचाए शोर की। सेम इसी नाम से पाकिस्तान में भी 1996 में एक फिल्म आई थी, और फिर इसके बाद 2002 में बॉलीवुड में एक और फिल्म आई जिसमें बॉबी देओल, शिल्पा शेट्टी और बिपाशा बसु थे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पसंद की गई 1974 वाली चोर मचाए शोर। शशि कपूर साहब, मुमताज, असरानी, डैनी, ये इस फिल्म के मुख्य किरदार थे और ये बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। म्यूजिक रविंद्र जैन साहब का था इस फिल्म में, और उनके पांचों के पांचों गाने धमाकेदार थे, जबरदस्त हिट हुए। उनमें से एक गाना तो आज तक हर बारात की जान रहता है, याद है ना आपको, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वास्तव में इतना जोशीला गाना है ना ये कि क्या कहिए। जैसे ये गाना सुनता हूँ मैं तो भैया नाचने लग जाता हूँ, ऐसे हाथों को पीछे की तरफ लहराते हुए। वैसे एक और दिलचस्प बात है इस फिल्म की, और वो ये कि ये जो प्रोड्यूसर साहब थे ना इसके, NN सिप्पी साहब, उन्होंने महज 2 साल बाद ही सेम टीम के साथ 1976 में फकीरा बनाई थी, और दोस्तों फकीरा भी अच्छी खासी चल पड़ी थी। तो फिलहाल तो हम भी चल पड़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ, और गाना कौन सा होगा ये अंदाजा लगाना बहुत ही आसान है। अरे भैया, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आखिर DDLJ नाम इसी गाने से तो मिला था। हा? तो ये गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए और सुनते रहेगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर। I'll be right back.

0: पर दहेज का भी बच जाएगा, लगे हाथों कन्या का दान कर दो,
1: कन्या दान कर दो,
0: हो

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां और मैं हूं आपके साथ इस कारवां में आपका हम सफर समर। रेडियो मसी 24/7 लाइव है ये सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो 24 घंटे आपके साथ। चलिए हम 1974 की एक और फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। 1974 में एक फिल्म आई थी हवस। इस फिल्म का जिक्र करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक देखे कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात की और हम कर भी रहे अपने शो में, लेकिन इस दौरान कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी आए जिन्होंने अपनी बुलंदियों के झंडे गाड़ दिए और उन्होंने अपनी फिल्मों से दर्शकों के दिल पर राज करना शुरू कर दिया। उस समय बड़े नामों के बीच एक उभरता हुआ नाम सामने आया था और वो नाम था द ग्रेट सावन कुमार टाक साहब का। जी हाँ, रोमांटिक फिल्में बनाने के मास्टर सावन कुमार टाक ने जिंदगी में काफी संघर्ष किया और उसके बाद अपने काम और टैलेंट की बदौलत उनको इंडस्ट्री में काम भी मिल गया, एक पहचान मिली। पता है आपको, सावन कुमार साहब चाहते तो खुद एक एक्टर बन सकते थे, बड़े हैंडसम बड़े खूबसूरत हुआ करते थे वो, लेकिन इसे किस्मत कहिए या यूं कहिए कि कई ऐसे लोग होते हैं जो खुद खिलाड़ी नहीं होते हैं बल्कि कोच होते हैं, दूसरे खिलाड़ी तैयार करते हैं, उनमें से सावन कुमार साहब भी थे। उन्होंने बहुत सारे न्यू कमर्स को एक्टर बना दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। बहरहाल सिंगापुर 1974 में उनकी एक मूवी आई थी, नाम था उसका हवस। इसमें डायरेक्टर भी वही थे, प्रोड्यूसर भी वही थे, राइटर भी वही थे, इवन सॉन्ग के लिरिक्स राइटर भी वही थे। अब बताइए, थे ना सावन कुमार टांग साहब ऑलराउंडर। वैसे हवस उनकी पहली फिल्म नहीं थी, उनकी पहली फिल्म थी मीना कुमारी जी के साथ बनाई गई गोमती के किनारे। और जब ये फिल्म आई जिससे उन्होंने अपना इंडस्ट्री में खाता खोला, तो जैसे कि परिपाटी है इंडस्ट्री में चर्चा चल जाती है डायरेक्टर और एक्ट्रेस के बीच, एक्ट्रेसेस के बीच, खासतौर से अगर मेल डायरेक्टर है तो काफी एक नजदीकी की बातें या यूं कहूं कि गॉसिपिंग शुरू हो जाती है। तो पहली फिल्म से सावन कुमार साहब का नाम मीना कुमारी जी के साथ जोड़ कर लिया जाने लगा था। चलिए फिलहाल तो हम हवस पर लौट आते हैं, मतलब हवस फिल्म पर लौट आते हैं। हवस का म्यूजिक दिया था सावन कुमार साहब की पत्नी उषा खन्ना जी ने। बहुत कम लोगों को पता है कि सावन कुमार साहब की पत्नी है उषा खन्ना। फिल्म के गाने बहुत अच्छे चले, पर सबसे ज्यादा जो गाना हिट हुआ वो था वाकई जादुई गाना था, जिसे अपनी मखमली आवाज में गाया मोहम्मद रफी साहब ने। गाने के बोल थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। वाकई बहुत खूबसूरत गाना था। यही तो वजह थी कि ये उस वक्त के 1974 के बिना का गीतमाला के एनुअल लिस्ट के टॉप 10 सॉन्ग्स में शामिल था। आज भी जब आप इस गाने को सुनेंगे ना तो वाकई एक अलग सा फील आएगा। वास्तव में सही कह रहा हूँ, यकीन नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए, लौट कर जरूर आएगा क्योंकि समर कर रहा है आपका यहीं पर इंतजार। ये है रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव और आप सुन रहे हैं यादों का कारवां।

बैक सिंगापुर। 1974 का साल है चर्चा में, 1974 की फिल्मों का जिक्र लेकर एक बार फिर से लौट आया है समर यादों का कारवां पर। तो आज रेडियो मजी 24/7 लाइव की इस खूबसूरत महफिल में अगली फिल्म का जिक्र करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमने देखिए प्रोड्यूसर्स की बात की, डायरेक्टर्स की बात की, एंड ऑफ कोर्स ऑलराउंडर सावंत कुमार साहब के बारे में भी हमने बताया। इस दौर में एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर और आए थे, उनका नाम था मोहन कुमार साहब। मोहन कुमार की एक खास बात थी जो ज्यादा लोगों को पता नहीं थी उस वक्त, और वो ये थी कि उन्होंने जो भी 12-13 फिल्में डायरेक्ट की उन सभी फिल्मों के नाम ए लेटर से शुरू होते थे। जी हाँ, वैसे ही जैसे राकेश रोशन की फिल्मों के नाम के से शुरू होते हैं, एकता कपूर के सीरियल्स के नाम के से शुरू होते हैं। वेल, ये जो मोहन कुमार साहब थे उनकी फिल्में आई आस का पंछी, अनपढ़, आई मिलन की बेला, आपकी परछाइयां, अमन अनजाना, आप आए बहार आई, आप बीती, अवतार, ऑलराउंडर, अमृत अंबा, ओ मतलब बहुत सारी फिल्में अ से ही शुरू हुई हैं, ए से शुरू हुई हैं। इस बीच 1974 में उनकी अमीर गरीब फिल्म भी आई। फिल्म के हीरो थे एवरग्रीन देवानंद, पर उस समय उनका जो करियर था वो काफी उतार चढ़ाव बरा रहा था, बल्कि यूं कहूं कि डामाडोल हो रहा था, गिर रहा था। यानी कि एक मूवी हिट तो उसके बाद की 5-6 मूवी सुपर फ्लॉप हो रही थी और फिर वापस धमाकेदार हिट दे देते थे वो। वेल, अमीर गरीब में उनके ऑपोजिट थी हेमा जी, हेमा मालिनी, उस वक्त 50 साल से ज्यादा उम्र के देवानंद साहब और उनसे आधी उम्र की उनकी हीरोइन हेमा जी के करियर के लिए अमीर गरीब बहुत काम कर गई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की। दरअसल इससे पहले 1970 में इस जोड़ी ने जॉनी मेरा नाम में भी साथ काम किया था, जिसे पसंद किया गया और उसी का फायदा कहीं ना कहीं इस अमीर गरीब फिल्म को भी मिला। खैर, चलिए म्यूजिक की बात कर लेते हैं, हम तो गाने सुनवाने वाले हैं आपको। तो अमीर गरीब में कुल 6 गाने हैं जिनके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और उन्हें सुरों से सजाया है ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने, लक्ष्मी प्यारी की जोड़ी ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों ने तो इन गानों में वो कहते ना 4 चांद लगा दिए। इसमें एक गाना है वो जो बहुत पसंद किया गया, सोनी और मोनी की है जोड़ी अजीब। तो दूसरा है बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, और हाँ किशोर साहब का एक सोलो सॉन्ग भी है मैं आया हूँ, ये जबरदस्त पसंद किया गया। अब आप बोल रहे होंगे यार समर तारीफ ही करते रहोगे, गाना भी सुनवाओगे, तो मैं आया हूँ सुनते हैं अपन रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। आप मेरे साथ रहिएगा, अभी तो कई फिल्मों का जिक्र बाकी है मेरे दोस्त।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

यादों का कारवां विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवां में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर। और आज 1974 का साल है चर्चा में, उसी की बात हो रही है, उस साल रिलीज हुई फिल्मों की बात हो रही है और फिल्मों के पीछे की कुछ कहानियां भी जो मुझे पता है मैं आपको सुना रहा हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक अलग ही दुनिया है। ऑन स्क्रीन काम करते करते यहाँ रिश्तों का मैच इतना पक्का और गहरा हो जाता है कि वो फिर लंबी बारी खेलता है। बस इस इंडस्ट्री में रिश्तों के बनते बिगड़ते खेल से तो आप भी वाकिफ होंगे। वेल, सेलिब्रिटीज की बात ही कुछ और होती है भाई, ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है। लाइमलाइट और ग्लैमर वर्ल्ड के लोगों की और उनकी सोच की बात ही कुछ और है। वो अगर लाइमलाइट में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा भाई। हाँ, खैर रिश्तों का मैंने जिक्र किया तो एक वो फिल्म आई थी ना 1974 में, अरे वो नाम था उसका दोस्त, जो आप और हमें दोस्त धर्म बाजी यानी कि धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर किया था इसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी ने और हेमा मालिनी इसमें हीरोइन थी। फिल्म को दर्शकों का बहुत जबरदस्त और अच्छा रिस्पांस मिला, पर पर्दे के सामने जो भी कुछ रहा उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे देखने को मिला और वो था धर्म बाजी और शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा साहब की दोस्ती। जी हाँ, दोस्ती फिल्म करते करते इन दोनों एक्टर्स के बीच की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। उन दिनों दोनों ने कुछ और फिल्में भी साथ की लेकिन फिर आया एक लंबा ब्रेक। हाँ, सालों बाद ये बेस्ट फ्रेंड्स दोबारा नजर आए फिल्म यमला पगला दीवाने के सीक्वल में। तब भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने मीडिया के सामने धर्मेंद्र साहब और उनके बीच की जबरदस्त बॉन्डिंग के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। बहरहाल जो दोस्त मूवी है उसमें अमिताभ बच्चन साहब का भी बतौर गेस्ट अपीयरेंस एक रोल था जिसमें उनका नाम आनंद है। और जहां तक सॉन्ग्स और म्यूजिक की बात है तो इसमें भी वही जोड़ी है जिसने उस दौरान अपने गानों से धमाका मचाया हुआ था। गेस कीजिए, एनी गेसेस? यू गेस इट राइट। जी हाँ, जब आनंद बख्शी गाने लिखेंगे तो उनका म्यूजिक देंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उन्होंने ही इस फिल्म का म्यूजिक दिया था। कमाल का म्यूजिक। फिल्म में गाने भले ही सिर्फ चार हैं लेकिन ये चार भी 40 से कम नहीं है। मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार और लता जी ने अपनी आवाज से इसमें जादू डाल दिया और इन गानों का दीवाना बना दिया जमाने को। इनमें से दो गाने तो बहुत ही पसंद किए गए, एक तो वो गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है और दूसरा दुनिया जब जलती है, इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया। तो चलिए अभी आपको फ्लैशबैक की दुनिया में लेकर चलते हैं इन गानों के साथ। आप सुनते रहिए समर के साथ यादों का कारवां।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी?
2: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
3: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
4: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा. गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का.
3: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम. गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई.
4: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप. आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट.

0: हमने बात की धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती की, लेकिन इस पर्दे के पीछे काम करते करते कई ऐसी जोड़ियां भी बनी जो रिश्ते में तब्दील हो गईं। जी हाँ, वैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स का आपस में शादी करना कोई नई या बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी गुजरे जमाने में इसे वाकई बड़ी बात के तौर पर देखा जाता था। ऐसी एक जोड़ी जो स्क्रीन शेयर करने के दौरान एक दूसरे से इतनी इम्प्रेस हो गई कि ये नजदीकियां 7 जन्म के रिश्तों में तब्दील हो गई। और ये सुपरहिट जोड़ी गैस कीजिए कौन सी थी। ये थी इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से पहचाने जाने वाले बेहतरीन अदाकार दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो जी की। वैसे इनके प्यार इश्क मोहब्बत की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल दिलीप कुमार साहब की फिल्म आन जब 1952 में रिलीज हुई थी, तब सायरा की उम्र महज 8 साल की ही थी। इश्कबाजी का सिलसिला ऐसा चला कि सायरा बानो ने उम्र में 22 साल बड़े दिलीप कुमार साहब से ब्याह रचा लिया। वैसे सिंगापुर इन दोनों की जोड़ी ने सिने पर्दे पर भी धमाल मचाया। गोपी बैराग फिल्म के साथ ही एक और फिल्म आई थी जो इसी साल आई थी 1974 में, जिसका नाम था सगीना। इसे भी बहुत पसंद किया गया। बंगाली फिल्म मेकर तपन सिन्हा के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म सगीना। सगीना में सायरा बानो के अलावा अपर्णा सेन भी थी। इस फिल्म को तपन पहले बंगाली में बना चुके थे और ये इसका रीमेक था। इस फिल्म में कुल 4 गाने थे, लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी के थे, जबकि म्यूजिक दिया था SD बर्मन साहब ने। तो आपको वो गाना तो याद ही होगा, सलाम भाई तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। वेल, मुझे लगता है कि शायद ये पहला गाना था जो किशोर कुमार साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए गाया होगा। मतलब मेरी नॉलेज में शायद ये पहला ही गाना था। अगर आपको पता है कोई और गाना इससे पहले वो गा चुके थे तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारे फेसबुक पेज पर आकर अगर बताएंगे तो पूरे सिंगापुर को भी पता चलेगा। तो चलिए फिलहाल एक काम करते हैं, सलाम भाई तो साहब बन गया सुनवा देता हूँ आपको, और आपका इंतजार करूंगा यहीं पर। आप सुनते रहिएगा यादों का कारवां विद समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।
1: साहब बन के कैसा

तो सा बन गया है, सा बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये भूत मेरा देखो, जैसे गोरा।

फकीरे वाह फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे वाह फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपनी दुम में बांधे अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस साला में तो सा बन गया सलाम तो साहब बन गया साहब बन के कैसा तने

0: फिर भी लगती है अलबेली, कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगूतेली।
1: यह गंगूतेली
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला मैं तो साहब।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: गया एग्जिट पर और गाने आ गए ड्यूटी पर। नॉनस्टॉप म्यूजिक, नॉनस्टॉप मस्ती, ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: नमस्कार एंड वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव। आपने ज्वाइन किया हुआ है और मैं आपके साथ हूँ इस खूबसूरत सफर पर।
1: कौन सा सफर?
0: अरे भैया कमाल करते हो, यादों का कारवां ही, और यादों का कारवां में आप मेरे साथ हैं। 1974 की सैर कर रहे हैं तो ये कमाल का साल था साहब। बेहतरीन मूवीज इस साल आई, बेहतरीन गाने इनके थे, बेहतरीन एक्टर्स और सभी कुछ बेहतरीन था बेसिकली। लेकिन इसी साल कुछ ऐसी फिल्में भी आई जिनके नाम बड़े अटपटे थे, ऐसे अटपटे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आप ही देख लीजिए, किशोर कुमार साहब की एक फिल्म आई थी, नाम था उसका बढ़ती का नाम दाढ़ी। वैसे ये चलती का नाम गाड़ी का सीक्वल बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। एक कमाल की कॉमेडी थी लेकिन ये चली नहीं ज्यादा। एक फिल्म आई थी चौकीदार, संजीव कुमार और योगिता बाली उनकी हीरोइन थी इस फिल्म में। एक फिल्म का नाम था धुएं की लकीर। भैया वो धुएं की लकीर कभी दिखाई नहीं दी क्योंकि हवा तेज चल गई। बॉक्स ऑफिस पर ये तमाम फिल्में पिट गईं। एक और फिल्म थी फाइव राइफल्स। वेल, क्या मकसद रहा होगा इनका इस तरह के नाम देने का, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलता। मैंने ये फिल्में देखी नहीं है। हाँ, एक देखिए, बढ़ती का नाम दाढ़ी मैंने देखी है, वो मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चली उस वक्त। तो कुल मिलाकर लबुलवाब ये कि ये फिल्में दर्शकों को थिएटर्स तक खींच लाने में कामयाब नहीं हो सकी। खैर चलिए, कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है। बहरहाल अब समर का भी अभी के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है, तो मुलाकात होगी फिर आपसे। जी हाँ, फिर मिलने के बाद के साथ अभी मैं चलता हूँ, लेकिन जाते जाते 1974 की फिल्म अजनबी का एक और सॉन्ग प्ले कर देता हूँ आपको, जो साल का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गानों में से एक था। आज भी सुनकर ये बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएगा। तो आप सुनिए ये गाना, और जाने से पहले बस इतना सुन लीजिए आप कि जो हम कहते हैं वो हम चाहते हैं कि आप करें। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। मोहब्बत बन के किसी के दिल में बस जाइएगा और किसी के चेहरे पर मुस्कान बन के सज जाइएगा। और याद रखिएगा दुआओं में मुझे भी। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। ये है रेडियो मसी 24/7 लाइव, 24/7 लाइव आपके लिए अभी। सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। बाय बाय, नमस्कार, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे। अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: Are you even listening? या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, why to fear when जीजी मार्ट is there?
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स।

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
2: Check it out.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सिंगापुर, बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
4: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
5: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: छत पक्षियां रंगा दी धूप बरसाती सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया दोनों को ही चाहतो न चाहतो से मारा इश्क़ करा इश्क़ करा इश्क़ करा इश्क़

0: टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
4: कैफे

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस
1: का। अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है, टाइम टू रेज द बार।
3: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
4: बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
5: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: छोड़ दो, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो यार, जाने। हाँ मम्मी, घर जाना है, मम्मी घर जाना है, फ्राइडे मनाना, छोड़ दो मुझे।
4: ये पुरानी फिल्मों की तरह भगवान के लिए छोड़ दो। क्यों छोड़ दें भाई, क्यों, आखिर क्यों छोड़ दें?
2: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
4: I've suddenly started feeling like बाबू भाई, ये बाबू भाई का स्टाइल है। होता तो मेरा स्टाइल था मस्ती टॉप चार्ट्स पर, लेकिन हाँ कब्जे में है बुलबुल, मेरे साथ है रेडियो मस्ती 24/7, सही जगह आए हैं आप, बिल्कुल मस्ती टॉप चार्ट से। और इस हफ्ते भी इस बुलबुल को कैद में रखा गया है। क्यों बुलबुल, बोलना।
5: ये ना इन्होंने लास्ट वाले में ना इन्होंने फिगर आउट कर दिया कि एक मतलब मैं ना बॉस का वीटो पावर यूज कर सकती हूँ। ये तो मतलब ऐसा लगा उनकी सडन डिस्कवरी हो गई। अब जैसे ही मुझे फ्राइडे वाले दिन जाते हुए देखती, पता नहीं इनके अंदर क्या हो जाता है कि अंतरा आना, अंतरा बैठना, क्या यार फ्राइडे की शाम मुझे ऐसे अकेला छोड़ के जाएगी, ऐसे ऐसे।
4: हाँ तो जहाँ कुछ और काम नहीं आता वहाँ इमोशंस काम आते हैं अंतरा के साथ में। ऑन रेडियो मस्ती गाइस, दिस इज रेणुका विद यू एंड ऑफ कोर्स साथ ही में अंतरा है मस्ती टॉप चार्ट्स से। वेल सच बताऊं तो आज इसके यहाँ रहने का एक रीजन है, खास रीजन है। लास्ट टाइम आपको याद है जब ये हमारे साथ में आई थी तो इसने क्या इल्जाम लगाए थे, तुम्हें याद है अंतरा क्या इल्जाम थे तुम्हारे?
5: हाँ जी हाँ जी, मैं कह रही थी कि मतलब नंबर वन गाना चेंज करो यार। हाँ। क्या चल रहा है, मतलब मेरी मर्जी का नंबर वन होना चाहिए, जब मेरे को रोक के मेरे से करवा रहे हो शो तो फिर मेरी मर्जी का भी तो कुछ चलना चाहिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रिक क्वेश्चन मेरा साथ में ये था कि अंतरा क्या आपको कैसा लगता है कि ये जो 20 गाने हैं उसमें से कितने गाने आपको लगता है कि यहाँ नहीं होने चाहिए, तो इसने उसमें बोला था 5 से भी ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक है फिर आज इसको पकड़ के इसी की प्लेलिस्ट से टॉप 20 बनवाते हैं और देखते हैं कि कितने गाने निकलते हैं। ऑलराइट, तो इसने जबरदस्ती कहीं कहीं से, वो कहते हैं ना, खुरेद खुरेद के नए नए गाने लेकर आई है। तो चलिए जी, नंबर 20 पर शुरू कर रहे हैं हम इस गाने के साथ। कुड़ी एक नहीं दो दो यहाँ हॉट शॉट लग रही है, लेकिन ब्याह करने का किसी का मूड नहीं है। क्यों अंतरा है क्या?
5: बिल्कुल, आपको जान के बहुत खुशी होगी, नंबर 20 पे एकदम नई नई एंट्री हो रही है, ऑल थैंक्स टू मी। इस गाने को एंजॉय करिए, एंजॉय।
4: शी इग्नोर्ड माय क्वेश्चन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्टे ट्यून्ड।
6: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 20।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Flashback.

0: रेडियो मस्ती 24/7 स्वागत आपका। जी हाँ बिल्कुल, अब ये मेरा शो नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि परमानेंटली इसको हमारा शो बनाया जाए। क्या ख्याल है आप सबका, वैसे रख ले या छोड़ दे?
1: They are fresh, they are hot, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top.
2: मैं तो इनको जानती थी, अभी मेरे को मेरा दिमाग ऑलरेडी चलने लगा है कि फ्राइडे को इनके सामने आफ्टरनून आना ही नहीं है, इनके सामने पढ़ना ही नहीं है।
0: हमारी टीम मीटिंग भूल गए आप फ्राइडे वाली अंतरा जी? बिल्कुल, हमेशा सुबह के हमारे मस्ती मैडनेस के बाद में थोड़ा ब्रेक लेंगे हम लोग, 2-3 घंटे का, ठीक है?
2: नहीं, हम ब्रेक नहीं लेंगे, हम जुझारू एम्प्लॉय जुझारू, हम बैक टू बैक करेंगे, सारे काम हो जाने चाहिए।
0: तो चलिए इसी के साथ में, क्योंकि मैडम ने लास्ट टाइम चैलेंज करी थी हमारी लिस्ट, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज नए नए यहाँ पर गाने इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, हमेशा की तरह मैं भी करती हूँ। बट एक नई फिल्म, जी हाँ, क्या है ये फिल्म का नाम है? जवानी तो इश्क होना है। व्हाट इज दिस अंतरा, व्हाट इज दिस?
2: दिस इज द सॉन्ग, यू डोंट रिमेम्बर? है जवानी तो इश्क होना है,
0: ये गाना याद है। वो याद है, पर ये फिल्म क्या है? वरुण धवन एंड मृणाल ठाकुर, ये बताओ।
2: यस यस, बट फिल्म का बता रही, लेकिन से आप पे बहुत पाए हुए हैं फिल्म में ऑलरेडी, आई थिंक उसी मतलब प्रमोशन भी उसका उसी हिसाब से हो गया। कोई तो इन्फ्लुएंसर थी, उसने बोला कि मेरे से मेट्रो स्टेशन पे आकर इसके मेकर्स ने मतलब हाथ पैर जोड़े कि अच्छी बातें कर दो इसके लिए, बस जब तक मैंने देखा नहीं कुछ किया नहीं तो मैं फालतू में अच्छी बातें क्यों करूं। वरुण धवन रीपोस्टेड, कहते हैं तुम्हें नए वायरल होने के लिए नए फॉलोअर्स मुबारक हो।
0: वेरी गुड,
2: इट वेंट लाइक,
0: हाँ मजे
2: आजकल करते हैं इन्फ्लुएंसर्स। बट द सेम इन्फ्लुएंसर रिप्लाइड ऑन द सेम वरुण धवन का रिपोस्ट कि सर जितने हैं हम बहुत खुश हैं, आपकी ये मूवी प्रमोट करके मुझे कोई नए फॉलोअर्स नहीं मिलने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच।
0: लेकिन आपको पता है कि इन सारी की सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में ये भी सारी की सारी मार्केटिंग प्लानिंग ही होती है, और कई बार पता लगता है कि ये सब चलते ही चलते मतलब चले चला जा रहा है। गाना नंबर 19 कमिंग अप नेक्स्ट, गिनी वर्ल्ड सनी 2 के साउंडट्रैक। ऐ खुदा कहाँ जाए, इतने फेक हो गए दुनिया में लोग, इतने फेक हो गए, कहाँ जाए हम, क्यों अंतरा, है ना, है ना?
2: बहुत ही एकदम इतनी सच्ची बात है, हर चीज इनकी एक प्लान लगती है आजकल तो, कुछ भी करते हैं ऐसा शख्स लगता नहीं इन्होंने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो इनकी पीआर टीम ने स्ट्रेटजी लगाई होगी कि ऐसा करते हैं। अब
0: इंसान के ऊपर से विश्वास उठ गया इंसान का, वेरी सैड।
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Trending song number 19.

0: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
1: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
0: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration, Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Mother's Day Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffles City. Limited seats. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: हिट अस ऑन द ग्राम, इट्स रेडियो मस्ती 24/7, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर एवर बजिंग फेसबुक पेज, रेडियो मस्ती 24/7 सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: और इसी फिल्म का, जी हाँ, जिसका आपने अभी अभी कंट्रोवर्शियल वाली एक मार्केटिंग गिमिक के बारे में सुना, उसी फिल्म का अगला जो गाना है वो यहाँ पर क्या कर रहा है और इस फिल्म के पीछे और क्या चल रहा है, वेल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ लिटिल बिट। गाइस वेलकम बैक, दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स विद अंतरा।
4: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
5: ये मेरा सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला है, ये मस्ती टॉप चार्ट्स में क्रेडू का ही है ना, अंतरा का नाम लगाने से कुछ कुछ नहीं होता, सब जानते हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है कि क्या चल रहा है यहाँ पर।
2: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते, कुछ भी, व्हाटएवर। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े, जी हाँ, ये तीनों के तीनों शेयर कर रहे हैं स्क्रीन स्पेस अपनी इस फिल्म में, जिसके बारे में अभी भी हम बात कर रहे थे। कंट्रोवर्सी से हम दूर रहते हैं, लेकिन वेल फैक्ट्स बताने आपके लिए हम बहुत जरूरी हैं। ये फिल्म जून में आने वाली थी, लेकिन अब मई में रिलीज हो रही है। क्यों हो रही है? शायद उन्होंने देखा होगा, यार अब मई में कर लेते हैं, इससे पहले कि धुरंधर और किसी और धुरंधर के बीच में। That must be the reason. और क्या reason हो सकता है for bringing it forward, अंतरा, तुम्हें क्या लगता है?
5: और क्या मतलब, धुरंधर जिस हिसाब से मतलब करती हुई जा रही है, तो आई थिंक दे आर रियली रियली स्कैर्ड। इनफैक्ट मैंने तो सुना धुरंधर अपना BTS का भी पूरा वो निकाल रही है एक मूवी, दे आर गोइंग टू रिलीज ऑन द थिएटर्स, एंड दे शुड जस्ट रिलीज ऑल द मूवीज बिफोर दे डू दैट।
2: एक्चुअली करना चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर न्यूज में भी यही है कि देयर इज लिमिटेड कॉम्पिटिशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ मे, और समर हॉलीडेज भी होंगी, तो इट्स एन आइडियल टाइम टू अटेंड टू अट्रैक्ट द यूथ एंड फैमिली ऑडियंसेस। लेकिन अभी फाइनल कॉल नहीं हुई है, जून से लेके मई में सबसे बड़ी बात है, देयर इज यश की टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, जो कि आने वाली है, तो उसके साथ

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: Musty Song of the Hour.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट,
3: मस्ती टॉप चार्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं गाने। जी हाँ, और अभी तक फिलहाल के लिए जो टॉप 20 चार्ट्स में से हमारे 3 गाने चल चुके हैं, उनकी एक झलक हम आपको फिर से देना चाहेंगे राइट आफ्टर दिस वन।
4: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती।
3: मुझे तो लगा हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हॉट, स्पाइसी, हैपनिंग, हर चीज, लेकिन फिर इसने कहा मस्ती टॉप चार्ट्स। That was gana number 20 played this evening, followed by and right after this one, which was on 19, aaya tha hamara agla gana, which is We have no idea how you feel about the new tracks, guys, but if you do have views, then 9151896 3 hai na antara, aur aapki khabar kya hai?
5: एक बहुत ही एक्चुअली अच्छी मूवी थी ये, बट अपने टाइम के लिए, बिकॉज वो इतनी आगे की आगे सोच लिया था केजो ने कि इट वाज नॉट रिसीव्ड दैट वेल। आई एम टॉकिंग अबाउट कभी अलविदा ना कहना।
3: आई लव द मूवी, बहुत ही बढ़िया, आई लव
5: इट, नाइस मूवी, राइट? तो जब आपको पता ही है, एवरीबॉडी नोज, जब रिलीज हुई थी तो सबने कहा था कि भाई ये क्या दिखा दिया, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया, क्या ही कहानी दिखा दी है। I, you know what I personally felt at that time, कि कितने सारे लोगों के पोले खोल दिए उस कहानी के जरिए, एंड लोगों ने कहा कि भाई इतना भी साफ साफ सच्चाई नहीं दिखानी है जो है स्क्रीन के ऊपर। बट अपेरेंटली अभी बातें कुछ ऐसे कल्ट क्लासिक बन गई है वो, क्योंकि बाद में लोगों Absolutely. ने बहुत अप्रिशिएट किया। नाउ दे आर प्लानिंग टू टर्न दैट इनटू अ वेब सीरीज।
3: ओह वाओ,
5: एक्चुअली केजो ने कंफर्म किया ये बात।
3: क्या बात है, क्योंकि नई चीज तो कुछ बन नहीं रही भाई से, सो पुरानी चीजों में ही, जो की ऑफकोर्स ज्यादा चली नहीं है, लोगों को शायद बाद में समझ आई है, सिलसिला फिल्म्स लाइक दिस, यू नो, फॉर सम रीजन दे आर नॉट एक्सेप्टेड दैट इजी, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद में लोग कहते हैं ओए ये तो बहुत अच्छी थी, फिर उसको
5: सेम विद आई थिंक लम्हे आल्सो
3: फेस
5: अ लॉट ऑफ बैकलैश बिकॉज़ ऑफ द स्टोरी लाइन।
3: एब्सोल्युटली। सो ये जो थोड़ी सी ऑफ बीट टाइप होती है, जो कि हमारे कल्चर कम्युनिटी में टोटली फिट नहीं बैठती, बढ़ जाते हैं फिल्म्स जैसे, तो All right, coming up next is hamara gana number 17. जो मैं कहती हूँ कि हर फ्राइडे शाम को मेरे घर से भी आते हैं।
6: पूछे जाती है के घर।
3: अब तो घर कब आओगे, अंतरा से भी यही पूछा जाता है।
2: Trending song number 16.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: भाई ये घर कब आओगे? आओगे? नॉट बैड, इट्स एक्चुअली डूइंग नॉट बैड। 18 से 17 पे आ गया तो मतलब अभी भी इसमें पोटेंशियल काफी है, पोटेंशियल टॉप चार्ट्स में रहने की।
3: माना था अंतरा ये गाना नंबर 1 पे रूल कर रहा था, वहां पे जो रूल कर रहे थे वो आज तक गहरे हुए पड़े उधर ही, और ये बेचारा 17, 18, 19 आउट।
2: आई नो।
4: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
3: जी हाँ बिल्कुल, 8 तारीख है और अप्रैल खत्म हो गया, मई आ गया, और मई आई गो अहेड टू गाना नंबर 15 अंतरा।
2: Yes, yes.
3: Alright, so guys, अभी आप सुन रहे थे, जी हाँ, जैसे कि अंतरा ने कहा, गाना नंबर हमारा 17 was घर कब आओगे, followed by गाना नंबर 16 जिसके बारे में हमने बात ही नहीं करी, that was this one।
5: जिन्नी सोनी लग दी है मनु किसे हो।
3: जी बिल्कुल, from
2: new entry,
3: absolutely, इसीलिए इसके बारे में बात करनी जरूरी थी। खैर, पसंद आया कि नहीं, मैं शर्त लगाती हूँ कि अगली बार नहीं रहेगा।
2: ये अभी से कह रही है, ये ना अपने दिमाग में टिक मार कर रही है, ये इसने कर लिया जो आज करना है, ये गाना तो नहीं रहने वाला है इस टॉप चार्ट्स में।
3: बिल्कुल, और मैं सबको बताना चाहूंगी कि भाई ऐसा है कि आज का जो टॉप चार्ट्स है वो शो मेरे नाम है, मतलब पर्ची मेरे नाम की कट रही है, लेकिन डेफिनेटली उस शो के जो गाने हैं, जो सारे के सारे सीरीज है, वो आज अंतरा जी के हिस्से हैं। तो अंतरा जी, आपने कैसे डिसीजन लिए आपने कि भाई ये गाने पलटने चाहिए इधर उधर?
2: जी, मतलब मुझे लगा कि जहां मेरी ट्रेडमिल में मेरी बैंड बज रही थी सुनते हुए, मैंने वाह वाह डाल दी है कि कुछ नए गाने यहाँ आने चाहिए। एनर्जी बढ़ाने के लिए, एनर्जी
3: देख लो यार, रेनू का है, फुल रिसर्च करती है, पता लगाती है बाकी सारी दुनिया में क्या चल रहा है, हम मेहनत करते हैं और पता लगाते हैं टॉप चार्ट्स क्या होने चाहिए, ये अपने ट्रेडमिल के हिसाब से पता लगाती है कि भाई मैं इस टाइम पे इंक्लाइन पे होती हूँ तो ये गाना चलना चाहिए। And that is gana number 15 coming up next from Cocktail 2. हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे।
2: कितना अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को सुनते हुए, कितना मतलब एक फ्रेश सी फीलिंग आ रही है ना? Please tell her.
3: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आ रही है, बहुत खुश है वो, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आप हर हफ्ते आओ मेरे साथ।
2: मुझे कोई बुला रहा है ना, मुझे को अभी लग रहा है कोई आवाज दे रहा है मुझे दूर से।
6: Trending song number 15.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: और हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं 5 बजे से यहाँ पर एक बंदी है। बंदी दो तरह के बंदी, एक होती है बंदा बंदी और
2: I agree. I was about to say that कि हाँ बंदी है वो, मैं हूँ वो। जो दूसरा वाला बंदी होता है ना, जिसको बंद कर लिया जाता है, बाहर से चाबी लगा के फेंक दी जाती है दरिया में, वो मैं वो।
1: जी, और ये है बंदी ग्रह से प्रस्तुत करते करते हुए हम दोनों मस्ती टॉप चार्ट्स।
0: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musti Top 20.
1: And on Musti Top 20, हमारे दूसरे घंटे में, जी हाँ, अब आप गाना नंबर 14, 13, 12, 11 ऐसे सुनते सुनते पहुंचेंगे गाना नंबर 1 पर। But let me remind you guys that the person who's behind these tracks today and the whole list is not me. ये इसने घूस मांगी थी मेरे से कि अगर मुझे रखना है तो मेरे हिसाब की लिस्ट बनेगी, तो मैंने कहा ले, ले
2: और क्या,
1: ले ले।
2: इट हैज टू बी अ फेयर डील समवेयर एंड एवरीबॉडी इज लविंग इट। ओके, एवरीबॉडी इज लविंग इट।
1: खुद ही अपने आप खुश रख रही है, वैसे ही जैसे आमिर खान खुश है अपनी जिंदगी में, खुश है बोल के कि मुझे तो लोग थैंक यू कह रहे हैं कि मैंने उनको हिंदी फिल्म में डेब्यू दिया है। ऑलराइट, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट नन अदर देन साई पल्लवी, जिनका डेब्यू होने जा रहा है उनकी हिंदी फिल्म एक दिन में। एंड ये जो बहुत ही प्यारी सी लड़की है जिनको सीता का भी रोल मिला है इन रामायण, एज यू नो, शी इज सेइंग दैट शी इज काइंड ऑफ एक्साइटेड नर्वस एज शी स्टेप्स इनटू बॉलीवुड आफ्टर अ सक्सेसफुल करियर इन साउथ इंडियन सिनेमा। तो वेल, जुनैद के साथ में इनकी फिल्म है एंड ऑफ कोर्स आमिर खान की बैकिंग है। तो आपको क्या लगता है अंतरा जी, कि ये फिल्म हिट होने वाली है या नहीं होने वाली है?
2: बस यही कहना है मेरा कि ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करते रहो बेटा, मेहनत।
1: सही बात है। आमिर खान जी ने मौके पे लगाया चौका, उन्होंने कहा चलो भाई इस लड़की को अब तो रामायण मिलने वाली है, तो इन्होंने 39 डेज पहले ही मूवी की बुकिंग शुरू कर दी है, विच इज येट अगेन अ क्रेजी थिंग टू डू। दैट्स गाना नंबर 14 कमिंग अप। इसको इन्होंने बहुत गिरा दिया है, पता नहीं इनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला गाना, फॉलोड बाय द रॉन्ग सॉन्ग इज आई ऑलवेज से, जो पिछले हफ्ते था 14 नंबर पर, इस समय आ रहा है 13 पर। नॉट बैड ऑन रेडियो मस्ती 24/7। अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी बैक विद सम मोर गॉसिप, है ना, मेरी बंदी
2: यो
1: भूलेगी।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 14।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
4: वेलकम रेडियो मस्ती 24/7। जी हाँ, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उस एक्साइटिंग दौर की तरफ जहां पर पता लगेगा हमें कि आज का गाना नंबर एक कौन सा है। फ्रैंकली गाइज, मेरा ही शो है, मेरे नाम के यहाँ पर पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा आज गाना नंबर वन।
5: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
6: दैट इज फॉर श्योर कि वो वाला नहीं है जो ये पता नहीं पिछले 10,000 साल से नंबर एक पे उन्होंने रखा हुआ है। आज जो है वो, इतना मैं हिंट दे सकती हूँ, वो गाना एक हफ्ते के लिए उस तख्ती से हटा दिया गया है। तो आप अब गेस करो कि those who know me, कौन सा है गाना नंबर।
4: जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ हम सब समझते हैं इन्होंने सडनली वो गाना लेकर आई होंगी जो कि हमने बहुत टाइम से रखा भी नहीं है हमारे टॉप चार्ट्स में, तो टोटल सरप्राइज पहुंचेगा।
6: बगावत की बू आ रही है मुझे यहाँ पे, बगावत की बू।
4: तो बताइए अगली गॉसिप क्या है हमारी बॉलीवुड से, बिकॉज दिस हैपेंस टू बी अ फुल टू बॉलीवुड शो।
6: या तो गॉसिप वाज, आई डोंट नो वेदर यू ऑल हैव वॉच दैट इंटरव्यू और नॉट। सो हमारी जो है जैकी बागनानी और उनकी जो अभी इनका वो आयुष्मान खुराना के साथ जो करके आ रही है रकुल प्रीत, तो हस्बैंड वाइफ ये लोग पॉडकास्ट पे बुलाए गए थे इंटरव्यू। अब व्हाट हैपेंस व्हेन अ मिलेनियल इज लाइक काइंड ऑफ एक्टिंग कूल एंड वांट्स टू यूज द जेन ज़ी लिंगो, तो वो फंस ही जाता है। तो जैकी बागनानी कहते हैं पॉडकास्ट में कि मेरा और रकुल प्रीत का जो तो रिश्ता है ना, वो एकदम सिचुएशनशिप जैसे लाइक रकुल प्रीत मतलब उसका बस चलता है, उसके अपने एक्सप्रेशन संभाल के रखे होंगे उस टाइम के कि भाई तू क्या बोल रहा है, मतलब आराम से कि तो मेरी एक्स का फोन आता है मैं तो स्पीकर पे रख देता हूँ। और रकुल, वी आर ट्रांसपेरेंट, लाइक ट्रस्ट ऐसा है, मैं सामने बात करता हूँ ऐसे करके। फिर बाद में रकुल प्रीत ने उसे कान पकड़वा के वीडियो डलवाया है और यूज करने है तुम्हें जेंसी के लिंगो, और करने सिचुएशन हो गई ना तुम्हारी,
4: बस ना समझ आए तो चुप रहो ना यार, और समझ आए तभी मुंह खोलो, और वो भी अपनी रिलेशनशिप के बारे में, तो वैसे भी मुंह मत ही खोलो। This is गाना नंबर 12 playing on मस्ती टॉप चार्ट्स। ये गाना डेफिनेटली बहुत जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी पार कर रहा है अपने रास्ते, एंड आई थिंक इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड, राइट अंतरा? चाहिए अगेन येट अनदर रीमिक्स है, या कह लो कि
6: आई नो, आई मीन बट इफ यू लुक एट द प्लेलिस्ट इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर काइंड ऑफ रीक्रिएटेड और रीमिक्स्ड वंस, सो दिस इज द करंट सिनेरियो व्हाट टू डू।
4: ठीक है, सुनते हैं ये भी, देखते हैं आगे आगे क्या हो रहा है। Nice surprise lined up for me as well today, guys.
7: Trending song number 12.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: Hollywood Flashback.

0: 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। तुमने सुना तो होगा ये भी अंतरा, है ना?
1: They are fresh. They are hot. They are spicy. And they are happening. Join us on Masti.
0: Masti Top Charts का एक नया ट्रेंड चला है यहाँ पर, जिसमें कि रेणुका कहती है कि नहीं, मैं अकेले फ्राइडे इवनिंग नहीं बैठूंगी। मेरे को अगर शो मांगा था मैंने, और मुझे धमकी दी गई कि आपने कहा था कि आपको एक शाम का शो करना है और इसीलिए हमने आपको फ्राइडे का शो दे दिया। मैंने ये तो नहीं कहा था सारी पार्टियां मेरी मिस हो और तुम जिम जाओ, तुम पार्टियां करो, तुम सब कुछ करो और मैं यहाँ बैठ के काम करूं। क्यों भाई प्रोग्राम मैनेजर,
2: देखो कैसे उभर के आ रही है ये सारी बातें, आप देख रहे हो? पहले मेरे से कराया, अच्छा मुझे तो दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आई वांट टू डू इट। उसके बाद मुझे ये आई का वी कब हुआ समझ में नहीं आया।
0: तो गिविंग यू अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन इसे कहते हैं। राइट, तो भाई मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी अबाउट 900 चूहे खाके। तो करण जौहर, जी हाँ, करण जौहर ने आवाज उठाई है, बहुत ज्यादा आवाज उठाई है। कह रहे हैं कि भाई हद हो गई, कितनी घटिया बात है कि हमारा पेड पब्लिसिटी बॉलीवुड में बढ़ता चला जा रहा है और हमारा जो ट्रू ऑडियंस का सेंटिमेंट है वो हमें दिखता ही नहीं है इस चक्कर में। मतलब पैसे दे दे के लोग अग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये हो गया, ये अच्छा है, ये अच्छा है। ऑडियंस का सच्चा व्यू क्या है वो तो देखने दो। एंड दैट इज गाना नंबर 11 कमिंग अप नेक्स्ट। हाँ तो अंतरा जी, आपको लगता है कि ऑडियंस का सच्चा बिहेवियर देखने देना चाहिए?
2: मतलब आउट ऑफ ऑल द पीपल हु इज सेइंग दिस, किन जो
0: एग्जैक्टली
2: लाइक, आर यू श्योर यू आर इन अ पोजीशन टू से समथिंग लाइक दैट? या एक बार रिविजिट कर लो अपनी लाइन इससे पहले कि ऑनलाइन ट्रोलर्स आके वो रिविजिट करवा दे।
0: एग्जैक्टली, और वहीं से तो पीआर ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। पीआर करना ही बंद कर देना चाहिए, उनके अचीवमेंट्स अपने आप बोलो। मतलब बिकॉज तेरी अपनी पीआर टीम अच्छी नहीं है डजंट मीन कि बाकी लोग यूज नहीं करेंगे। आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज योर पीआर टीम, दैट्स व्हाट इट इज।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 11।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत. मेरा शो है इसीलिए मैं ही शुरू करूंगी, लेकिन उसके बाद काम करेंगी सारा का सारा. हमारी जो आज बड़ी आई है ना यहाँ पर जो हमारी गेस्ट बन के आई है, जो पिछले हफ्ते बुराइयां कर रही थी हमारे टॉप चार्ट्स की, मैं देख रही हूँ धीरे धीरे एक ट्रेंड निकल के आ रहा है इनके टॉप चार्ट्स में भी, उसके बारे में बात करते हैं. दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती.
3: हाँ, ये कहना चाहती है कि इसके सारे फेवरेट जो धुरंधर के गाने हैं ना, सब इसने लाइन से बैक टू बैक लगा
2: दिए. एक्चुअली वेरी ट्रू. सो आई सी दैट अभी जो जैसे दो गाने आने वाले हैं, राइट, 10 और 9, मैं देख रही हूँ कि 10 में इन्होंने एक नई एंट्री घुसाई है, ठीक है, और वो नई एंट्री इज देयर, इट्स प्रीटी गुड. मतलब नया गाना आते ही 10 पर आ जाए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज की दुनिया में. और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 10 वाले को 9 कर दिया है, 9 वाले को 8 कर दिया है. तो पिछले हफ्ते जो मेरे साथ लड़ाइयां हो रही थी इनकी, नहीं नहीं कुछ अलग होना चाहिए, तो वो अलग सिर्फ एक नंबर का था अंतरा जी.
3: और क्या, अब नई एंट्री में कोई आएगा तो अगलों को थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना. अब देखो कैसे, मतलब धुरंधर को कैसे मैं वापस ऊपर ऊपर भेज दूं.
2: अभी ऊपर नहीं भेजना है, और अभी इस बात का वक्त नहीं आया, और इस बात का भी वक्त नहीं आया है कि आशिकी 2, जी हाँ, जो अभी 13 साल पुरानी हुई है, उसके डायरेक्टर मोहित सूरी से पूछा जा रहा है कि भाई आशिकी 3 क्यों नहीं कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम. मतलब तुझे आशिकी मूवी याद है, The One and the Two?
3: Yes, yes. And I completely remember.
2: बस प्रॉब्लम सारी ये है कि अभी राहुल रॉय है जैसे, या अनु अग्रवाल है, ठीक है, अनु अग्रवाल के साथ तो खैर बहुत ही ट्रेजिडी जो हो गई, 1 की बात कर रही हूँ मैं. और राहुल रॉय जो हैं वो अभी उस दिन बेचारे उनके पीछे पड़ गए लोग. मतलब वो बंदा बदल गया यार, वो क्या था तब और क्या अब हो गया. ऑब्वियसली उम्र हो गई है, बहुत कुछ बदल गया. वो एक सूटकेस लेके सड़क पे बॉम्बे में चल रहा था, ठीक है, उसकी फोटो देखो क्या हाल हो गया है, देखो क्या हाल. Come on guys, leave him alone. The kind
3: ये
2: of
3: ना ये पपराजी लोगों ने ना ये सारी चीजें कर करके बहुत ही बैंड बजा रखी है. लाइक इवन नाउ यू डोंट नो कि मतलब व्हाट टू बिलीव व्हाट दे आर पोस्टिंग आल्सो.
2: टोटली.
3: और एक दिन आलिया भट्ट हॉस्पिटल के बाहर से शायद जेनरिक चेकअप करा के निकली होगी. क्या कोई गुड न्यूज है? वो हॉस्पिटल से क्यों जा रही भाई, इंसान है वो, जा ही सकती है हॉस्पिटल.
2: That is the new gana which has made an entry on number 10. और यहाँ पे भंगड़ा शुरू हो गया है. मैं भी शुरू हो जाऊंगी. आई लव दिस एंट्री. बाय द वे, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी अंतरा जी. And of course, followed by this gana, which अभी तक मैं डांस नहीं कर पाई हूँ.
0: Trending song number 10.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: I love you, रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
3: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
4: Trending song number 9.

0: आइए आइए और आपके स्वागत में यहाँ पर और बॉलीवुड की गॉसिप बिल्कुल तैयार है। आई नो पीपल हु लव बॉलीवुड अंतरा एज यू कैन सी द मैसेजेस आर एक्चुअली एंजॉयिंग एंड एंजॉयिंग कि अच्छा ये भी है ये भी है और तुम दोनों मतलब सबकी लगा रही हो, हम छोड़ते हैं क्या किसी को?
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
2: भाई हम तो कहते हैं reports are to be believed, तो उसके बाद आओ अच्छे से gossip करें।
0: Actually बॉलीवुड की खबरों में ना ये सबसे ज्यादा मजे हैं, आधा रिपोर्ट होती है और आधा हम रिपोर्ट में डाल देते हैं। बट दैट्स देखो हम अपफ्रंट होके बता रहे हैं कि बॉलीवुड की खबरें विल नेवर बी कंफर्म्ड, राइट? देयर विल ऑलवेज बी स्पेकुलेशन, देयर ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ थिंग। जैसे कि एक स्पेकुलेशन है कि अक्षय कुमार जो है ही यूजेस टेलीप्रॉम्प्टर ऑन द सेट्स, वो कभी अपने डायलॉग याद नहीं करते हैं। भाई अब इंडस्ट्री बोल रही है कहीं धुआं उठा है तो आग कहीं तो होगी ना, क्यों अंतरा जी आपको क्या लगता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल कहा तो जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव नोटिस्ड कि हम तो उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं कि शायद ही रूमर ही होगा, बट वो सच्चाई निकल आती है।
0: और देखो ना एक बार जब हमने अपने कॉर्पोरेट वीडियो का शूट किया था तो अक्षय कुमार अंतरा जी ऐसे जो पॉपुलर सुपरस्टार्स होते हैं ना उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है। हमारे अपने स्टूडियो में हमने देखा है कि छोटे मोटे स्टार्स लाइक मैं हमको याद हो जाती है लाइनें, लेकिन बड़े बड़े स्टार्स बड़े बड़े जो मल्टीपल फिल्मों में कास्ट हो रहे होते हैं एंड दैट इज गाना नंबर 9 कमिंग अप नेक्स्ट। हाँ
2: What a memory and I have no shame in like accepting it also. मेरे से नहीं होते यार, रट्टा नहीं मारा जाता मुझसे। तो हम लोगों ने figure out इतना और उस time पे वो आजकल तो कितने apps वगैरह आ गए ना रेनुका, उस time पे तो जुगाड़ was the main thing कि कहाँ पे ये जो print out है वो चिपकाया जाए ताकि मेरी आंखें camera पे रहे लेकिन मुझे दिखे भी साफ साफ, क्योंकि आंखें भी उतनी तेज नहीं है तो font भी बड़े होने चाहिए। It was insane.
0: Sometimes am I glad कि हम भारतवर्ष से हैं जहां पर जुगाड़ has been हमारी अपनी contribution to this world. So yes, we are able to do that. Radio Mercy 24/7 just said Gaana number 9, but actually that is Gaana number 8 coming up next. And of course, पिछले हफ्ते वो 9 पे था, मैंने कहा ना एक एक नंबर हटा के मतलब इन्होंने नई प्लेलिस्ट बनाई है आज।
3: Trending song number 8.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: गद्दारी की बू। जी हाँ, इस घंटे के गाने रिवील हुए और मुझे गद्दारी की बू आ रही है। बू इनको जो भी आ रही थी पहले, ये डबल ट्रिपल 10 times बू है।
0: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Musty Top 20.
2: अब इन्होंने आज जो है इस बंदी को बंदी बुलाया हुआ है, तो मेरे को कुछ तो करना था। मैं सोचा कि ऐसा करते हैं कि when she did not realize it अभी तक, she just realized कि क्या हुआ है इनके साथ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, अभी छोड़ो ना।
1: मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। रॉक तो खाओ। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यू नो व्हाट हैज हैपेंड, शी हैज थ्रोन माय फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ माय टॉप फेवरेट्स, जिसको जब भी मैं टॉप चार्ट्स करके घर वापस जाती हूँ, इट इज प्लेइंग फुल ब्लास्ट इन माय कार। ओके, फुल ब्लास्ट, क्योंकि उसमें उफ क्या दर्द है, उसमें क्या क्या आवाजें हैं, उसमें क्या म्यूजिक है, लेकिन इन्होंने उसको लात मार के निकाल दिया टॉप चार्ट से। She has actually thrown. I'm not going to tell you more than this right now. लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आज किसी के में दम है तो वो इंसान यहाँ पर गाना नंबर एक बता के दिखाए। मैं कहती हूँ, मैं पर्सनली घर आके आपको अवार्ड दूंगी अगर आपने आज का गाना नंबर एक पहचान लिया तो। That is number 7 playing next.
2: See, I made sure that Renuka will stay till gaana number 1. Kyunki ye wo wala gaana laga ke fir chali jati thi na gaadi mein blast mein sunne ke liye.
1: जरूर, इसी वजह से इन्होंने उस गाने को इतनी जोर से लात मारी कि वो मेरी कार में ही जाके बैठा हुआ, कहता बहन यही सुन ले, मेरे को स्टूडियो में भी जगह नहीं मिली आज के दिन में, भाई मैं तुझे वापस लाऊंगी, तू वापस आएगा, तू वापस आए। प्रॉब्लम ये है, एक बार एक गाने को लात पड़ जाए तो वो बेचारा अपनी जगह पर नहीं आ सकता वापस, इट हैज टू स्टार्ट अपने आप, जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, बेचारा फिर से वहां से।
2: जी जी, बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत गंदा, बहुत गंदा। मुझे लगता है अगली बार मुझे तेरे साथ वही करना पड़ेगा जो तूने मेरे इस गाने के साथ किया है। ऑन रेडियो मस्ती गाइस, जितने लोग मेरे साथ मतलब सांत्वना दे रहे हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9151896 3 पर।
3: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore. Check it out.
4: Trending song number 7.

0: change is close to me. Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी?
2: Order today from GG Mart, your personal grocer.
3: It's time for
4: Masti Song of the Hour.
5: Song of the Hour.

0: do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: दिल टूट जाए या चार्जर गुम हो जाए, मम्मा सब संभाल लेती है।
4: जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ।
3: This Mother's Day, give her the royal treatment she truly deserves with a majestic Mother's Day celebration. Shahi Maharani. Choose from a lavish lunch buffet or a special a la carte dinner experience on Sunday, 10th May. From tandoori delights to maa ki dal to kulfi pops and jalebis. All this at just $62 plus plus per adult and $42 plus plus per child. Plus, every mom receives a complimentary jar of gulab jamun or namak pare and a special photo card to capture the memory. Stay Shahi lunch and dinner at Shahi Maharani Raffles City. Limited seats. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions applied.
5: मैं बहुत गोरी हूँ और मैं बहुत एजुकेटेड थी फॉर दिस रोल. मेरी ना आंखों में एजुकेशन नजर आ रही थी. ऑन रेडियो मस्ती 24/7. कौन हो सकता है ये इंसान जो कह रहा है मेरे से वो बहुत बड़ी फिल्म का रोल ले लिया गया बट ओनली बिकॉज मैं बहुत गोरी हूँ और मैं बहुत एजुकेटेड लगती हूँ.
6: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20.
7: भाई मस्ती टॉप चार्ट्स बाय द वे चल रहा है बट बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं इस इंडस्ट्री में हु आर केपेबल ऑफ सेइंग दिस लाइन कि ये नहीं मिला बिकॉज आई वाज लाइक टू क्वालिफाइड फॉर इट.
5: एक्चुअली और वो क्वालिफिकेशन उनकी है भी ऐसी. मुझे तो समझ में ये नहीं आता, अगर तुम इतनी हाईली एजुकेटेड एक्ट्रेस हो जो कि आप डिग्री होल्ड करते हैं इकोनॉमिक्स में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी मेडफोर्ड मैसाचुसेट्स यूएसए से और आप वहां की आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो फिर आप यहाँ आकर फिल्मों में क्या कर रही हैं, कर क्या रही हैं, क्या हुआ उसके बाद बताओ जरा.
7: कहो ना प्यार है, कहो ना, यही हुआ
5: एग्जैक्टली. और उसके बाद में लड़ाइयां कर रहे हो तुम घर के अंदर, तुम्हारी माँ बोल रही है तुमने चोरी कर ली चीजें, तुम बोल रहे हो तुमने कर ली इनके, मतलब इतने एजुकेटेड लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं. बट एनीवे, कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं थी. इनको लगान जो फिल्म थी आमिर खान की उसमें से निकाला गया था क्योंकि ये बहुत गोरी है और ये बहुत एजुकेटेड है और कहती है मेरी आंखों से झलकती है ये बातें इसीलिए.
7: हम सिर्फ सुन के ये कह सकते हैं राइट राइट अमिशा, आई या वी अंडरस्टैंड, इट्स ओके.
5: और इतने एजुकेटेड लोगों के लिए वाकई इस इंडस्ट्री में ज्यादा जगह नहीं है, ये तो आपके करियर पाथ ने हमें बता ही दिया. क्यों भाई अंतरा जी,
7: टू मच फॉर देम आल्सो टू हैंडल.
5: हां, कई बार अच्छी चीजों को भी ना लात पड़ जाती है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अच्छी चीजों को भी पड़ जाती है. मेरे बेस्ट गाने को इस बार लात पड़ गई है. बट जहाँ ये बोल रही है पॉलिटिक्स नहीं थी, मैं कहती हूँ ये डेफिनेटली पॉलिटिक्स है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बॉस के फ्राइडे को रोकने की वजह से बॉस के फेवरेट गाने को निकाला गया है फ्रॉम मस्ती टॉप चार्ट्स. है ना अंतरा?
7: है, नहीं नहीं, यू ऑल नो मी, आई एम सच अ नाइस पर्सन, हाउ कैन आई डू दैट? नो.
5: देखा.
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 6.
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.
9: ना दे दिल पर देती मुंह तन्नत दारूना.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: Trending song number 5.

0: एक होती है जिंदगी की कॉम्प्लिकेशन वैसे भी, और एक होती है वो कॉम्प्लिकेशन जो बनाई जाती है जिंदगी में ऐसे भी, मतलब ऑन रेडियो मस्ती 24/7 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
1: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती।
2: जैसे इन्होंने आज रेणुका ने खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया पूरी चीज, अच्छा खासा आराम से अपनी स्पेस में बैठ के शो कर रही थी अपना, लेकिन नहीं, इनको लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए थी, इसीलिए आज मुझे यहाँ पे बिल्कुल वापस से इस सीट पे बिठा दिया गया है, क्योंकि इनको फन आ रहा है। इनका जब मन आ रहा है माइक ऑफ कर दे रही है, कहती है फिर उसके बाद ओ अच्छा उप्स बंद हो गया, खत्म हो गया। मैं यहाँ पे बोली जा रही हूँ।
0: अच्छा तो मैं एक बात बताती हूँ, मतलब ठीक है इंसान ऐसे ही सीखता है। अब क्या है ना, मैं आमिर खान की जिंदगी की बात कर रही हूँ, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन। अभी जब उनकी ये नई फिल्म एक दिन जो आ रही है, राइट, उसमें उनकी पहली पत्नी के साथ में जो उनका बेटा है जुनैद, ठीक है, दैट इज द गाय हु स्टारिंग इन द फिल्म, तो चलो प्रीमियर पर वो तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद उनकी जो तीसरी अब गर्लफ्रेंड है, राइट, वाइफ तो नहीं कह सकते, जो तीसरी औरत है उनकी जिंदगी में, गौरी स्प्राट, जो कि अपने गौरी स्प्राट अपने जर्मन हस्बैंड का फैमिली नेम नहीं छोड़ती बिकॉज इट जस्ट साउंड्स गुड। अब वो गौरी इंडियन बन जाएंगी तो स्टाइल खत्म हो जाएगा, तो वो गौरी जो कि स्प्राट अपने एक्स हस्बैंड के नाम के साथ में और अपने एक बेटे के साथ में उस इवेंट पर आई, और साथ में आया आजाद राव खान भी, जो कि दूसरे
2: सेकंड
0: के साथ में
2: का बेटा है।
0: हाँ, हाँ। पर दूसरे का भी आधा ही है क्योंकि वो सब साथ में सरोगेट है, तो यू नो हाउ इट इज कि उसमें एक और भी औरत इन्वॉल्व है इन इन एन अननोन वे। तो मैं ये सोच रही थी कि जिंदगी एक होती है कॉम्प्लिकेटेड और एक होती है जिंदगी आमिर खान की, राइट, दीज टू थिंग्स आर टोटली आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। क्या बात है, क्या बात है, कितनी इज्जत दी गई है इस गाने को कि पांच परी रखा गया है एज लास्ट टाइम में, तो वारी जावा वारी जावा। सो अब आप सोचो कौन सा गाना है जो नहीं आया अब तक, थिंक अबाउट इट, है ना अंतरा जी। आते ही हम ये बताएंगे कि 4, 3 और 2 पे कौन सा गाना है आज, ठीक है, लेट्स डू दैट, स्टे ट्यून पीपल, मेरे साथ रोने के लिए तैयार हो जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन।
2: आप नहीं रो, इसीलिए ये चेंज किया है, इसीलिए
0: मैं या बाकी सब,
2: बाकी सब, आप इंक्लूडिंग आप, देखो वो गाना सुनते ही आपको रोना जाता है ना, आपके आपके आंखों में आंख बर्दाश्त नहीं मुझे
0: आज से। आज किसकी आंखों में आएंगे वो देखेंगे हम, रुको तुम।
3: Trending song number 4.

0: यहाँ पर जो है माहौल काफी गंभीर हो रखा है। बात बात पे मुझे घूरा जा रहा है यहाँ पे अक्रॉस द टेबल, ऐसे आंखों में से ना फायर की शॉट्स ऐसे प्यू प्यू प्यू प्यू करते हुए लेजर वाले शॉट्स आ रहे हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई।
1: हाँ हाँ, फिर भी आर पार नहीं हो रहे हैं तुम में, मैं देख रही हूँ तुम वापस भेज रही हो मेरी तरफ।
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top Top. We are fresh, we are spicy, we are hot, and of course we are happening.
1: रेडियो मस्ती 24/7 पर आज अंतरा और रेणुका साथ में मस्ती टॉप चार्ट्स पर। उसका रीजन है कि भाई जैसा कि हम शुरू में बता रहे थे कि पिछले हफ्ते जब मैंने इनको रोका तो इन्होंने धमकी दी हमको कि मैं दुनिया जला के राख कर दूंगी, सब बदल दूंगी, ये लिस्ट ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है फिर एक बार और आके करो दुनिया जला।
0: But I kept my word, didn't I? Yes. I literally kept my word.
1: Yes. और किसी की दुनिया जली हो या नहीं, डेफिनेटली मेरी दुनिया तो जल ही गई है। So guys, I'm going to be playing three ganas, which are number 4, 3, 2, and you will be able to tell us आज कौन सा गाना one तो नहीं है। All right, the next one. राज और भी गहरा हुआ कि नंबर एक पर कौन सा है? जी बिल्कुल। और तीसरा गाना है जी बिल्कुल जान से गुजरते हैं। ये तीनों के तीनों गाने 4, 3 और 2 पर हैं और मैं आपको बता सकती हूँ नंबर एक पर केड़े पासे जाए सजना नहीं है, नहीं है वो, नहीं है वो गाना। अंतरा वो गाना क्यों नहीं है आज हमारे मस्ती टॉप चार्ट्स पर, ये बताओ तुम मुझे।
0: हाँ मतलब ठीक है, अच्छे से सेंटी गाना है, अच्छा गाना है, बट देन थोड़ा सा जब फ्राइडे शाम है धूम धड़ाका होना चाहिए, थोड़ा सा एकदम म्यूजिक में ऐसा जोश होना चाहिए, लाइक लगे कि फ्राइडे इवनिंग है। अब क्या क्या करेंगे हम, केड़े पास से जाए सजना, वैसे भी जिंदगी में इतना दुख है।
1: मैं बता रही
0: उसके बाद फिर
1: डिग दे
0: तो सरताज जी।
1: यस माय आंसूज माय हंजू आर आल्सो डिगिंग टुडे, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ यू राइट नाउ। बंगाल के इलेक्शंस क्या हो गए, सारी दुनिया के बंगाली चौड़े हो गए।
3: बॉलीवुड फ्लैशबैक, फ्लैशबैक

0: शुक्र है भगवान का कि इतनी इज्जत भी नहीं कम करी कि गाना नंबर एक को सीधा 6 पे 5 पे 10 पे नहीं निकाल दिया। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, गहरा हुआ। अभी तक आपने नहीं सुना ना? जी हाँ, वो नंबर 2 पर ही आएगा।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on
2: मैंने उनको बोला भी कि मतलब because I love her so much, I couldn't do it. Like कैसे कैसे कर देती मैं गहरा हुआ को और कितना गहरे पानी में डाल देती।
0: वैसे
2: तो मैंने उसको 2 पे रखा।
0: नहीं, वैसे ही जैसे तुमने मेरे नंबर 1 गाने को, नंबर 2, नंबर 1 गाने को मेरी आंखों के आंसू को बाहर फेंका, वैसे ही कीड़े पासे जाइए सजना। आई एम ऑल्सो आस्किंग द सेम क्वेश्चन। रेडियो मस्ती 24/7। बिफोर वी लीव गाइस, गाना नंबर 1 आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने में कि किसी ने नहीं गेस किया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्हीं को पता हो सकता था कि वो गाना नंबर 1 पर भी आने की औकात रखता है। वेल, आई एम नॉट श्योर व्हाट माय फेवरेट लिसनर्स हु गेट वेरी पैशनेट अबाउट गाना नंबर 1। डैंग साहब, आपका क्या ख्याल है आज के गाना नंबर 1 के बारे में, जरूर बताइएगा, क्योंकि आप तो लड़ने झगड़ने पर, खून खराबे पर उतर आते हैं जब गहरा हुआ नंबर 1 पर नहीं आता है। तो well, I'd love to know. तो देखते हैं रेडियो मस्ती 24/7 पर कौन सा गाना है नंबर 1 पर। इससे पहले कि आप लोगों को पता लगे,
2: Underdogs have to win sometimes, और जब ऐसा मौका मिलेगा ये क्रांति वाली आवाज जरूर उठाई जाएगी और ये नंबर 1 बदल के रहेगा।
0: जी बिल्कुल, और मैं उससे पहले भाग के रहूंगी क्योंकि मैं खून खराबे पे यहाँ उतर आऊंगी अगर मैंने वो गाना यहाँ सुना, उसको मैं इतनी इज्जत नहीं दे पाऊंगी। इट इज अ गुड सॉन्ग बट आई एम सॉरी ड्यूरिंग आवर टॉप 20 इट हैज बीन नंबर 10, 11, 12। रेडियो मस्ती 24/7 पर ये देखा है हमने पूरा का पूरा शो जो आज तक हमारा हुआ है उसमें सबसे बड़ा चढ़ाव नंबर 11 से नंबर 1। जी हाँ, उसने 11 के 1 नंबर को लात मारी और रॉन्ग रीडिंग कर नंबर 1 पर आ गया। राइट अंतरा?
2: कोई रॉन्ग रीडिंग नहीं है। एक तो मुझे ये पहले भी नहीं समझ में आया कि इस बेचारे गाने को इतनी इज्जत पहले क्यों नहीं दी गई। Now that I am here, तो उस गाने को उसकी एक बार तो इज्जत, उसकी एक बार तो टॉप पोजीशन का जो रस है उसको चखना तो चाहिए एक बार।
0: People, Antra is going to stay with you आधा घंटा एक्स्ट्रा आपके मैसेजेस के जवाब देने के लिए। After this one, I am leaving now. Have a fantastic rest of the weekend. मेरी आंखें, मेरे गला सब भराया रो रो के।
2: ना ना, नंबर 1 नाचते नाचते आप लोगों ने ना आपने सुना तो मेरा नाम बदल देना अगर नहीं नचाया। लाइक नाचते नाचते आप फ्राइडे की शाम की शुरुआत, मतलब क्या ही अलग लेवल
0: मैजिक। तो डिग दे हंजू आंख मेरी फिर भी रो।
2: साढ़े पास आइए सजना, साढ़े पास आओ आओ, मैं लेके चल रही हूँ। साढ़े पास, साढ़े पास।
3: Trending song number 2.

0: trending song.
1: Check it out.
0: Number one.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara week.

प्यार किया तेरे मेरे रास्ते में खड़ी दीवार किया है ना, है ना। प्रेम के थाने में मैंने दिल का एफआईआर किया, तूने मुझे प्यार किया मैंने तुझे प्यार किया है ना, है ना।

शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Pen. Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: रात अकेली है
3: तो क्या हम

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

कहां से कहां जाऊं, कहां मैं छुप जाऊं, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊं, हूं खुद से जुदा।

0: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: ना तो आज बरसात का मौसम,

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो
2: Yo ho, I experienced that too.

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, है एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

message, eh?

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल. इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than life. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Yo!

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti, 24/7 Live.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.